FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने को हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी प्रथम सभा आरंभ।

0: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के

0: आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानकारी करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख

श्री रामचरितमानस गान उत्तरकांड से संकलित एपिसोड 387। कलाकार होंगी अनुराधा पौडवाल और संगीत होगा सतीश भाटिया का। नमस्कार चुरू, ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 7:30 से। इसमें चर्चा होगी मृदुभाषी होना एक कला है और जानकारी दी जाएगी डिहाइड्रेशन से बचाव जरूरी। समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सुबह 8:00। 8:15 का समय रहेगा मॉर्निंग न्यूज का। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम समय रहेगा दिन में 8:30 पर। दिन में 9:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

दिन में 9 बजकर 10 मिनट पर आपके लिए लेकर आएंगे देशकान स्वास्थ्य आपका। ये कार्यक्रम होगा दिन में 9 बजकर 15 मिनट पर। इसमें आप भेंट वार्ता सुनेंगे नाक कान गले के लिए सावधानियां रखें विषय पर डॉक्टर तन्वी शर्मा से कुंज बिहारी बिरमा की बिरमेवाला की बातचीत। फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक लेकर आएंगे दिन में 9 बजकर 30 मिनट पर। दिन में 10 बजे का समय रहेगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम का। कार्यक्रम संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा दिन में 11 बजे से। दिन में 11 बजकर 5 मिनट पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग समय रहेगा दिन में 12 बजे। 12 बजकर 30 मिनट पर आप आनंद लीजिएगा लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर का। कलाकार होंगे डूंगर राम भट्ट और साथ ही हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे दिन में 1 बजे। दिन में 1 बजकर 5 मिनट का समय रहेगा कार्यक्रम महिला जगत का। इसमें चर्चा होगी प्यार के साथ साथ पर्याप्त अनुशासन भी है जरूरी विषय पर और जानकारी होगी बीमारियों के कारण और बचाव विषय पर। मिड डे न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे दिन में 2 बजे। दिन में 2 बजकर 15 मिनट का समय रहेगा दोपहर समाचार का। दिन में 2 बजकर 30 मिनट पर आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। दूसरी सभा में शाम 5 बजे का समय रहेगा युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का। इसमें चर्चा होगी शिक्षा का बदलता स्वरूप विषय पर। कार्यक्रमों संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा शाम 5 बजकर 55 मिनट पर। शाम 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचार बुलेटिन का। 6 बजकर 5 मिनट पर आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्मी देशभक्ति गीत आप सुन पाएंगे शाम 6 बजकर 10 मिनट पर। 6 बजकर 20 मिनट का समय रहेगा संस्कृत में समाचार बुलेटिन का आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे शाम 6 बजकर 40 मिनट पर। स्पॉन्सर्ड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन पाएंगे शाम 7 बजे। चर्चा होगी किसान क्रेडिट कार्ड पर। जानकारी दी जाएगी ग्रामीण महिलाओं का कृषि में योगदान विषय पर। राजस्थानी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7 बजकर 30 मिनट से।

रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के 90 साल एक गौरवशाली यात्रा विषय पर डॉक्टर मंजू शर्मा प्राचार्य लोहिया कॉलेज से भेंटवार्ता। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आपके लिए लेकर आएंगे 8:30 पर। रात्रि 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का। न्यूज एट 9 आप सुन पाएंगे रात 9 बजे। 9:15 का समय रहेगा फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन का। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा रात 10 बजे। 10:30 पर आप सुन पाएंगे लोक संगीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।

नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हो गए हैं चिंतन कार्यक्रम की एक और नई कड़ी में। हमने अपने आसपास जरूर ये देखा है और हम अपने से छोटे या बड़े को ये कहते हुए भी सुनते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने से हमारी जो याददाश्त है वो बढ़ती है और हमारे ज्ञान का विस्तार होता है। यानी पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र और मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है और यही एक शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार एक सच्चा मित्र जीवन के हर मोड़ पर सलाह देता है, उसी तरह से जो पुस्तकें होती हैं वो भी निस्वार्थ भाव से हमारा मार्गदर्शन करती है। और ये जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, ज्ञान की ऐसी कुंजी है जो हमें इतिहास, विज्ञान, कला और दुनिया भर की संस्कृतियों से जोड़ती है। ज्ञान का अथाह भंडार है। अच्छी पुस्तकें हमें जीवन के जो नैतिक मूल्य है, संस्कार है, सही गलत का बोध करवाती है और संकट के समय में हमें सही निर्णय लेने में भी हमारी मदद करती है, हमारे लिए प्रेरणादायक बनती है, सही और गलत की पहचान करवाती है। एक सच्चे मित्र की तरह पुस्तकें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, एकांत में भी हमें सकारात्मक ऊर्जा देती रहती है और एक सच्चे सलाहकार की तरह हम उससे अपना जो निर्णय लेते हैं उसमें सहयोगी बना सकते हैं। गीता हो, रामायण हो या कोई भी धार्मिक पुस्तक हो या किसी महापुरुष की आत्मकथाएं हो, हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और मानसिक शांति प्रदान करती है, यानी हमें प्रेरणा देती है। ये पुस्तकें ज्ञान का भंडार है जो मानसिक शांति के साथ साथ हमें अंदर से ऊर्जावान भी बनाती है। और जब हम निराशा के आवरण से घिर जाते हैं तो उस समय एक किरण है वो आशा की, इन पुस्तकों के ज्ञान के माध्यम से हम संजो सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने और सही दिशा पाने के लिए। अच्छी किताबों का संग ही सबसे उत्तम होता है। पुस्तकें और उसका महत्व हम तभी जान पाते हैं जब हम उन पुस्तकों को पढ़ करके उसमें लिखी हुई बात को अपने जीवन में धारते हैं। और जीवन में हम जब विकट परिस्थितियों से घिर जाते हैं उस समय वो पुस्तकों का जो ज्ञान है उसको हम व्यवहारिक रूप से लागू करके हमारे लिए एक सच्चा मित्र है, वो सहयोगी के रूप में हम

के सच्ची मित्र है ये केवल एक कहावत नहीं है, इसको अगर हम गूढ़ तरीके से महसूस करें तो हमारे जीवन में एक सच्चे और निष्पक्ष मार्गदर्शक की तरह होती है, जो हमें बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान, प्रेरणा और सही दिशा प्रदान करती है। निस्वार्थ ज्ञान का भंडार है और मुसीबतों में मार्गदर्शन देती है। हमारी भावनाओं को समझना, किताबें हमें विभिन्न किरदारों के माध्यम से जीवन के यथार्थ संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों का पाठ भी पढ़ाती है। हमें पुस्तकों को श्रेष्ठ साथी बनाना चाहिए। किसी भी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती अगर हम श्रेष्ठ पुस्तकों को अपना सहयोगी बनाएंगे। यात्रा करते समय, अकेलेपन में, सोते समय किताबें कभी भी आपकी है वो सच्ची सहयोगी बन सकती है। एक अच्छी जो पुस्तक होती है वो 100 दोस्तों के बराबर भी हो सकती है। यदि आप भी अपने पढ़ने के अनुभव और आप बताएंगे हमें, तो ऐसा इस तरीके से जो पुस्तकें हैं वो ज्ञान वर्धन करती है और हमें है वो उच्च गुणवत्ता वाले नैतिक ज्ञान को भी प्रदान करती है। अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोता इस समय आकाशवाणी चुरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। सीमा मिश्रा सुरेश वाडकर की आवाज में सिद्ध चौपाइयां आपने सुनी। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अगली भक्ति रचना।

सीमा मिश्रा साथियों की आवाज में अभी आप राम भक्तिमय रचना सुन रहे थे। वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

0: इश्क पर जोर नहीं, इस फिल्म का नगमा भी अपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी की बोल, एस टी वर्मन का संगीत। जानवर, लीजिए इस फिल्म में सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: कौन है दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए

जब जब फूल खिले इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर आनंद बख्शी के बोल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में हीर राजा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। बोल कैफी आजमी के संगीत था मदन मोहन का। श्रोता इस समय आकाशवाणी चुरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम की बहार। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा।

हमसाया फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत था ओपी नैयर का। इस गाने के साथ ही आज का गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चुरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान, उत्तरकांड से संकलित, एपिसोड 387। कलाकार अनुराधा पोडवाल और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

श्री रामचरित मानस गान उत्तरकांड से संकलित एपिसोड 387 अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

ये कलकल की ध्वनि, बहते पानी की आवाज, आज के समय में यानी बढ़ती हुई गर्मी में पानी का जितना महत्व है, जितना हमारे लिए आवश्यक है, उसका और कहीं कोई मायना ही नहीं है। शरीर में पानी की अगर कमी हो जाए तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं और उससे बचाव बेहद ही जरूरी है। बढ़ती गर्मी में हम नियमित रूप से अगर पानी का सेवन करते रहेंगे, पानी हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखेगा और हमारे जो शारीरिक अंग है उनको भी ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। नमस्कार साथियों, लेकर हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम नमस्कार चूर्ण।

हमें अपने शरीर में पानी की कमी की पूर्ति निरंतर करते रहना चाहिए, यानी कि हमें दिन में 8 से 10 कप है वो पानी जरूर पीना चाहिए। 2-2.5 लीटर पानी जरूर हमारे शरीर में जाना चाहिए। और ये जो बढ़ती गर्मी है, इस गर्मी में हम अपनी प्यास को बुझा करके अपने शरीर को तरोताजा कर सकते हैं। आप प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में, हर आधे घंटे में, 20 मिनट में पानी है

वो निरंतर रूप से पीते रहिएगा, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं आएगी। और जब हम पानी नहीं पीते हैं तो थकान आते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, किडनी और मस्तिष्क जैसे अंग है उनको भी नुकसान पहुंचता है। और अगर आपको पानी सादा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नींबू पानी है उसके रूप में भी पी सकते हैं, छाछ बनाकर भी पानी की पूर्ति की जा सकती है। इसके साथ तरबूज है, खीरा है, इस तरह के फल भी खाए जा सकते हैं जो पानी की पूर्ति करते हैं। और जूस भी पिया जा सकता है। और आपकी जो डाइट है उसमें अधिक से अधिक जो पानी वाले फल सब्जियां हैं जैसे टमाटर, तरबूज, खीरा, इनको आप है वो शामिल कर सकते हैं। और जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने साथ एक पानी की बोतल लेकर जरूर निकले। और जो चाय, कॉफी जैसे शरीर में पानी की कमी करने वाले जो पदार्थ है उनसे आप बचिएगा। और आपको अगर अत्यधिक पसीना आ रहा है, दस्त है, उल्टी की समस्या आ रही है तो साधारण पानी के साथ साथ आप ORS का घोल भी ले सकते हैं। इसलिए ये जो बढ़ती गर्मी है और इसमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें निरंतर है वो पानी पीते रहना है। और जो हमारे शरीर है उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें बेहद ही आवश्यक है कि हम अपने शरीर को तरोताजा रखने के लिए पानी नियमित रूप से पीते रहें।

0: सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। ये प्रसारण आकाशवाणी चूरू का है। मीठा बोलना यानी मृदुभाषी होना वास्तव में एक अद्भुत कला है। ये जन्मजात नहीं होती, बल्कि इसको हम अभ्यास और समझ के माध्यम से सीख सकते हैं और इससे हमारे रिश्तों में भी मजबूती आती है। ये वास्तव में एक जादुई प्रभाव है। मीठा बोलने वाले व्यक्ति के शब्द सुनने वालों को सहज ही महसूस करवाते हैं और कड़वी बात भी अगर प्यार और समझदारी से की जाए तो उसका असर भी सकारात्मक होता है।

और ये हमारी मधुर वाणी ही है जो बड़े बड़े विवादों को भी समाधान कर सकती है। ये कला है बड़े बड़े जो मन मुटाव है, झगड़े हैं, उनको भी पल भर में खत्म कर सकती है। और अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो ये वाणी है जिसके माध्यम से गुस्से को शांत भी किया जा सकता है। तो जब भी बोले सोच समझ कर बोले, हमेशा शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करेंगे और किसी भी नकारात्मक या चुभने वाली बात को अगर सकारात्मक तरीके से कहना हम सीख गए तो वास्तव में हमें बोलने की कला आ गई है।

0: बातें और मुलाकातें निरंतर यूं ही बढ़ती रहती हैं, लेकिन जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें उसकी बात को धैर्य पूर्वक सुनने के में भी हमारी क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता होना भी बेहद जरूरी है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और उन्हें सम्मान देने की निशानी है। आप सामने वाले की परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार कोमलता के साथ सहानुभूति पूर्वक अपनी बात कह भी सकते हैं और सामने वाले की सुन भी सकते हैं, और इससे आपके जीवन में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। मृदु भाषी लोगों को समाज और कार्यस्थल दोनों जगह अधिक सम्मान और लोकप्रियता मिलती है, और यही जब आप कटु वचनों से दूर रहते हैं तो आपको खुद को भी तनाव कम होता है और मन में शांति होती है, यानी आपको मानसिक शांति भी मिलती है। तो आपकी जो वाणी है उसका उपयोग आपको किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ऐसी कला का हमें अभ्यास करना चाहिए जिससे कि हम है वो एक बेहतर सलाहकार बन सके, अपनी बात को सुनने के लिए लोगों को मजबूर कर सके। इसलिए यह भी एक कला है कि आपकी वाणी में कितनी मधुरता है।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
2: तो ये एक वाणी है जो हमें अपनी आवाज के बल पर दूसरों तक है वो पहुंचने का मौका देती है। मीठी मधुर जो वाणी है वो दूसरों को से सम्मान भी दिलाती है। विनम्रता, प्रेम और शांति के साथ बात करना ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। सौम्यवाणी यानी इसकी आवाज और बोलने का तरीका बहुत ही शांत और प्रभावशाली रूप में हम देख सकते हैं। बातचीत में सामने वाले को पूरा जब हम सम्मान देते हैं, कभी किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये आदर का भाव दिखाता है। ऐसे ही लोग अपनी मीठी बातों से बहुत जल्दी ही दूसरों को अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, यानी सकारात्मक स्वभाव में भी वृद्धि होती है।

श्रोता इस समय आकाशवाणी चुरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चुरू। बातचीत करते हैं इंडियन एआई मिशन की। ये एक रणनीतिक सरकारी पहल है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक व्यापक स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित है और इसका मूल उद्देश्य ये है कि भारत में एआई का निर्माण करना और भारत के लिए एआई को उपयोगी बनाना रहता है। और इस मिशन का उद्देश्य भी यही रहा कि तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और कंप्यूटरिंग संसाधनों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना रहता है। इसमें हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन, प्राथमिकता जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ जो प्रमुख भारतीय भाषाएं हैं उसके अनुरूप इसको तैयार किया गया है और देसी और बड़े बहुआयामी मॉडल को इसमें विकसित करना रहता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
2: तो श्रोताओं, ये था आज का नमस्कार चूरू कार्यक्रम। कार्यक्रम से हमें दे अनुमति, नमस्कार।

0: अभी आप नमस्कार चूरू कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से डिले समाचार प्रभात।
1: गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में

0: क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरी

वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे

0: 155 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो, ध्रुव कपिला और रोहन कपूर, रुत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों

0: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. US Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security,

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

आकाशवाणी चुरू से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संगम। लीजिए सुनते हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की युगल आवाज में गाई ये नज़्म।

मिताली सिंह की आवाज में अभी आपने ये नज्म सुनी। सुर संगम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर सुबह के 9 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे, सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और राज्य में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के दूसरे दिन आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ की सांचू चौकी जाएंगे। वे सुरक्षा बलों के जवानों से बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। बीएसएफ सेक्टर में होने वाली इस समन्वय बैठक में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने वाली मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। इससे पहले गृहमंत्री के बीकानेर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नाल हवाई अड्डे पर उनकी अगुवानी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने

0: कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारमण ने कल मुंबई में एक कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के इकोसिस्टम को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कच्चे तेल के अलावा उर्वरक की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले की जांच में ये बात सामने आई है कि सभी प्रभावित प्रसूताओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था जिसमें ऑक्सीटोसिन नदारद पाया गया है। जांच में इस इंजेक्शन के सैंपल फेल पाए गए। इस बीच कल सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रिप चढ़ाने के बाद कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। इन्हें कोटा रेफर किया गया जहां उनकी स्थिति अब सामान्य है। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर ने बताया कि प्रभावित रोगियों को दिए गए आईवी फ्लूड को जांच के लिए भेजा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ये पोर्टल 15 दिनों के लिए खुला रहेगा। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में कहा कि योजना के तहत रेल और हवाई मार्ग से 56,000 बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इनमें 50,000 ट्रेन से और 6,000 श्रद्धालु हवाई मार्ग से यात्रा करेंगे।
2: मैं आम जन से अपील करना चाहूंगा कि जो पोर्टल खुलेगा 15 दिन के लिए पोर्टल खुला रहेगा, आप देवस्थान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। ऑनलाइन आवेदन आप करोगे तो ही आप उसमें जैसे नोटरी में आ सकोगे, इसलिए इस जो 15 दिन का समय मिल रहा है उसमें आप ऑनलाइन आवेदन करें, जिससे आपको देश भर के बड़े तीर्थ स्थान है, चाहे वो रामेश्वरम है, मदुरई है, चाहे जगन्नाथपुरी है, चाहे कामाख्या देवी आसाम है, महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, सोमनाथ मंदिर है, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, नेपाल पशुपतिनाथ है, ये सारे इनको दर्शन करने का आपको अवसर मिल सके, इसलिए आम जन से निवेदन है कि वो ऑनलाइन आवेदन जरूर करें।
0: जोधपुर में कल भोगी शैल परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। ये मारवाड़ की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में खास मानी जाती है और क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को लोगों से जोड़ने का काम करती है। सामाजिक समरसता और लोक आस्था की इस परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। झुंझुनू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ग्राम विकास अधिकारी को 8.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। झुंझुनू में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि आरोपी ने परिवादी से ये राशि आवासीय भूखंड पर मेडिकल स्टोर चलाने पर कार्रवाई का भय दिखाकर ली थी। आरोपी ने कन्वर्जन प्रक्रिया के नाम पर परिवादी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। राज्य में जल संरक्षण और आधुनिक खेती की दिशा में करौली जिला नई पहचान बना रहा है। जिले में किसानों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को अपनाकर पानी की बचत का संदेश दिया है, साथ ही उत्पादकता बढ़ाकर मिसाल कायम की है। इस संबंध में

0: और जानकारी हमारे करौली संवाददाता से।
1: नीति आयोग की मार्च माह की रिपोर्ट में जिले ने 114% प्रगति दर्ज की है। जिले को 816 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला था, जबकि 935 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई। योजना के तहत एससी एसटी लघु सीमांत और महिला किसानों को 75% तथा सामान्य किसानों को 70

0: माकेवेली शर्मा आकाशवाणी समाचार करौली।
1: अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से नए शावकों के आगमन की खबर है। ताल वृक्ष रेंज में बाघिन ST22 ने दो शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही सरिस्का में अब बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इनमें 11 बाघ, 17 बाघिने और 26 शावक शामिल है। नए शावकों के नजर आने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के जल स्रोतों और वाटर पॉइंट्स को नियमित रूप से भरवाया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। रात के समय गर्म हवाओं का प्रकोप लोगों को बेहाल कर रहा है। कल 8 शहरों में दिन का पारा 44 और 13 शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। 45.6 डिग्री के साथ सीकर का दिन और 33.3 डिग्री के साथ हनुमानगढ़ के संगरिया की रात सबसे गर्म रही। मौसम विभाग के अनुसार सीकर के अलावा चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। वहीं करौली, दौसा, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, फलौदी, कोटा, अलवर और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ। राज्य में अगले 3 दिन अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे। सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और राज्य में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चूम केंद्र है। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है समूह स्वरों में देश गान।

0: आप
1: समूह स्वरों में अभी आप देश गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य आपका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं भेंट वार्ता, नाक कान व गले के लिए सावधानियां रखें। इस विषय पर डॉक्टर तन्वी दिनेश शर्मा से कुंज बिहारी बिरमीवाला की बातचीत।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी चूरू समय समय पर विभिन्न स्वास्थ्य आवश्यकताओं, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बीमारियों को लेकर विभिन्न इंटरव्यूज आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। आज आकाशवाणी चूरू के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर तन्वी दिनेश शर्मा। मैडम, आपका स्वागत है।
3: नमस्कार
2: मैडम। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब एक डॉक्टर होता है और वो ENT स्पेशलिस्ट होता है तो ENT इन तीनों का फुल फॉर्म और इन तीनों का एक साथ कनेक्शन क्या है?
3: तो ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट, यानी कि कान नाक गला। लेकिन जो ENT है वो सिर्फ ईयर नोज थ्रोट और कान नाक गला तक ही सीमित नहीं है, वो द्वार है पूरे बॉडी का।
2: जी।
3: तीन इंद्रियां भी हैं प्लस एक द्वार भी है। कान नाक और गला तीनों से ही कुछ अंदर जा रहा है, प्लस वो कुछ किसी चीज से कनेक्ट भी कर रहे हैं, पूरी गली से, गले से, पेट से, सिर से, ये सब चीजों का कनेक्शन कान नाक गला है। और श्वास संबंधी प्रॉब्लम्स, गले में आवाज संबंधी प्रॉब्लम्स, सुनाई देना, थायराइड, गला, चक्कर आना, सर दर्द, एलर्जीज, गले के अंदर बार बार एसिड का आ जाना, ऐसी विभिन्न बीमारियां हैं जो ENT के स्पेशलिस्ट डील करते हैं।
2: जी, इसीलिए ENT का एक अलग डिपार्टमेंट भी होता है हर बड़े हॉस्पिटल।
3: जी, जी जी जी।
2: आपने बताया कि जैसे थायराइड का एक इशू आपने बताया, इसमें ये गले पर ही थायराइड प्रभाव करता है या शरीर के किसी अन्य पार्ट पर भी कर सकता है?
3: नहीं, वो पूरे शरीर को रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि थायराइड जो हार्मोन है वो पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो उसका ऊपर नीचे होना तो पूरे शरीर के हर एक चीज को, आपके इमोशंस को, भावों को, आपकी एक्टिविटी को, फिजिकल और मेंटल दोनों, उन दोनों चीजों को प्रभावित कर सकता है।
2: देखिए, नाक, कान और गला,
3: जी,
2: तीनों अलग अलग चीजें काम करती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि तीनों आपस में कनेक्टेड रहे।
3: एब्सोल्युटली।
2: सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि जब किसी एक हमारे शरीर के पार्ट पर, ये मान लीजिए नाक पर या कान पर, कोई भी प्रभाव पड़ता है तो क्या उससे जो अन्य इंद्रियां हैं, जो आप गले की बात करते हैं, तीनों हैं ENT, ये तीनों आपस में कनेक्टेड रहती है, तो इन तीनों पर फिर प्रभाव पड़ता है उसका?
3: हाँ बिल्कुल।

0: बोल सकते हैं ऐसा कि जैसे अगर आप बात करें सुनाई देने की, अगर आप इयर्स की बात करें, यदि किसी व्यक्ति को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है तो पहली चीज तो वो खुद बहुत इरिटेटेड रहेंगे, बहुत ही उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, प्लस इसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, इसकी वजह से वो उनका रोज का परफॉर्मेंस कम होगा तो उनका आउटपुट कम आएगा, इस वजह से वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे और एक डिस्टर्ब लाइफस्टाइल होगी। उसके अलावा उनको भी खतरा हो सकता है, यदि उन्हें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट सुन नहीं रही हैं तो वो उनके लिए भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसी प्रकार से यदि वो सुनाई नहीं दे रहा है और बहुत ही इरिटेटेड रह रहे हैं तो स्लीप नहीं आएगी, सोएंगे नहीं, और सोएंगे नहीं तो सिर भारी होना, दुखना, सो एक साइकिल बन जाता है, पूरा बॉडी किस प्रकार से डिस्टर्ब हो जाता है। आवाज किसी की बहुत लंबे समय तक सही नहीं है तो अच्छे तरीके से अपनी बात नहीं कह पाना, इरिटेटेड रहना और खराश आना आवाज में, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। नाक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सांस ले रहे हैं, बेटर स्लीप नहीं आ रही आएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, विकास नहीं होगा, ब्रेन में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, शरीर में नहीं पहुंचेगी, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा, इसकी वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती।
1: हमारे शरीर की तीनों महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियां हैं और तीनों का, जैसे कि आपने अलग अलग बताया कि छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बड़ा प्रभाव डालती है।
0: जी
1: आमतौर पर हम सुनते हैं और देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कान में सुनने की समस्या का एक सामना करना पड़ता है, तो
0: जी
1: ये उसमें अवस्था का प्रभाव पड़ता है या व्यक्ति के जो सामान्य, जिसे हम मानते हैं कि जिसे एक अपनी भाषा में किट्टी आना, इस
0: जी
1: तरह
0: जी
1: का क्या क्या कारण रह सकता है?
0: बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कारणों को हम अलग अलग चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एज से रिलेटेड भी कारण हो सकते हैं, कोई फिजिकल चीजें भी हो सकती हैं जो कान के आवाज आने को अवरुद्ध कर रही हों, या फिर उनकी लाइफस्टाइल में कुछ इस तरीके की चीजें हों जिसकी वजह से उनको सुनाई देना कम हो गया हो। यदि एज के लिए सबसे पहले बात करें तो बड़ा ही कॉमन है प्रेसबाइक्यूसिस, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ में नसें कमजोर हो जाती हैं जिसकी वजह से वृद्ध लोगों को कम सुनाई देता है। नॉर्मल चीज है बट ये भी एक कॉमन सी चीज है। दूसरी चीज है जैसा आपने बोला कान में वैक्स या किट्टी आ जाना, वो भी कॉमन है। मौसम नॉर्मल कान हमारा वैक्स तैयार करता है, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो हमारे हमारे लिए एक शरीर के लिए बहुत जरूरी चीज है, यदि वो नहीं होगी हर कुछ घुस जाएगा और वो निकल नहीं पाएगा। कान की बाहरी कान की क्लीनिंग के लिए वो वैक्स जरूरी है, बट उसका ओवर प्रोडक्शन या उसका अंदर रह जाना कई बार प्रॉब्लम दे सकता है।
1: तो वैक्स आप कह रहे हैं कि बनती है, बनने की प्रक्रिया है, ये अपने आप कान से बाहर आती रहती है?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से हमें आंख के अंदर जो भी चीजें बनती हैं वो आराम से जो अश्रु होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, उसी प्रकार ये वैक्स है अपने आप बनती है और अपने आप ही ये बाहर निकल जाती है, स्वतः क्लीन होता रहता है कान अपना।
1: तो किसी को अगर इस तरह की समस्या है तो खुद इलाज ना करके या कोई और जो घरेलू उपचार बोलते हैं जिसे हम बिना ना
0: जी
1: समझे
0: जी
1: में करते हैं, तो
0: जी
1: उसको एक ENT स्पेशलिस्ट के पास कब जाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो ये कि घर में कान का इलाज कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना है, बिकॉज वो ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति ने देखा नहीं है। हर चीज हमारे हाथ हुए, चेहरा हुआ, जो भी चीजें आपके सामने हैं, यदि उधर कोई चोट लग गई तो आप एक हद तक उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन कान हम सब ने नहीं देखा है। आमतौर पर जब तक मैं एक ओटोस्कोप, जो मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे लेकर ना देखूं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कान अंदर से कैसा दिखता है, उसकी कितनी लेंथ और डेप्थ है, और पर्दा किस प्रकार कहां पर स्थित है। यदि वो नहीं पता है तो हम यदि उसे क्लीन करने की या उसमें कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो हम मैक्सिमम टाइम्स वो गलत ही करेंगे, तो उसे नहीं करना है क्योंकि आपको उसकी जानकारी नहीं है।
1: जितना जल्दी हो सके तो डॉक्टर
0: जी
1: के पास
0: जी
1: जाना चाहिए।
0: तो कुछ समस्याएं हैं जहां हम बोलते हैं कि यदि आपसे ये चीज नहीं, अब आपके हाथ में नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, या ये चीजें नॉर्मल दायरे में आती हैं और ये चीजें तो गड़बड़ आती हैं, बट देन आपको जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है और चीज बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो रही है, उस प्रोसेस में आप डॉक्टर के पास चले जाएं।
1: एक सामान्य सी बीमारी ये भी होती है कि कान में आवाज आना,
0: जी जी
1: जैसे किसी हम तेज आवाज के स्पीकर के पास बैठ गए या मौसम के साथ परिवर्तन के हिसाब से, तो ये क्या कारण होता है?
0: तो इसे हम टिनिटस बोलते हैं। कुछ भी कर नहीं रहा है व्यक्ति, बिना किसी दबाव के और व्यक्ति को कान में आवाज सुनाई देना, इसे टिनिटस बोलते हैं। कई प्रकार के हो सकते हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं, जैसे घूंघाहट सी आना, घड़ी जैसी टिक टिक होना, घंटी जैसी बजना, ट्रेन के जाने की आवाज जैसी आना, सीटी सी बजना, इस प्रकार के कुछ चीजें उनको कान में सुनाई दे सकती हैं। ये यूजुअली नॉर्मल होता है।

0: आपको सुन रहा है बहुत ही शांत वातावरण में, तो ये एक नॉर्मल सा फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है तो ठीक है। बट अगर इससे आपकी लाइफस्टाइल हैम्पर हो रही है, यानी कि आप स्लीप लेने में प्रॉब्लम, आप रात में सो ही नहीं पा रहे हैं, वो आपको इतना ज्यादा व्यथित कर देती है कि आप रात में सोने में वक्त लगा रहे हैं, नॉर्मल भी आप यदि जब बैठे हैं तब भी आपको वो आवाज बहुत तेज आ रही है,
1: बेचैन कर दे,
0: या फिर एक ही कान में बहुत ज्यादा आ रही है, या फिर इस आवाज के साथ में और भी बहुत सी चीजें आ गई हैं, जैसे चक्कर आ रहा है, सर में दर्द आ रहा है, सुनाई भी देना बंद हो गया है, जैसे हमारी एक आम भाषा में बोलते हैं डुज्जे से लग गए, बड़ा ही कॉमन सा चीज है समझने के लिए, ऐसा कोई कुछ कह रहा है या इससे संबंधित और कुछ भी प्रॉब्लम उन्हें हो रही है, उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए।
1: इसमें कुछ समय वेट भी करना चाहिए कि एक दिन दो दिन या फिर?
0: यस जी बिल्कुल, आप कुछ महीने, लोग इसे महीनों तक टालते रहते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता, क्योंकि इसकी एक खास बात है, बड़े ही कम लोग होते हैं जिनको बहुत नॉर्मल जब आसपास शोर चल रहा हो तब भी ऐसी आवाज सुनाई दे रही हो, ज्यादातर ये टिनिटस हमें साउंड प्रूफ एनवायरमेंट्स में, साइलेंट एनवायरमेंट्स में सुनाई देता है तभी।
1: अभी हमने बात की कान की
0: जी,
1: अब हम बात करते हैं नाक की
0: जी,
1: जिसमें एक एलर्जी और साइनस की जो समस्या है
0: जी,
1: वो अक्सर व्यक्ति उसका शिकार होता है और पता भी नहीं चल पाता कि उसको एलर्जी हुई है या क्या है, तो ऐसे में कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर किस तरीके से अपने खुद का जो आहार विहार है, खुद का रहन सहन है, वो सुधारें कि इस तरह की समस्या ना आए?
0: देखिए, सबसे पहली तो नाक का काम है हवा अंदर लेके जाना और बाहर लेकर आना। इसके अलावा जो काम ज्यादातर लोगों को नहीं पता है वो है उस एयर का ह्यूमिडिफिकेशन करना। बाहर का जो तापमान है वो हमारे शरीर के तापमान से अलग है, उस तापमान को शरीर के अनुकूल बनाने का काम नाक करता है, काफी डिग्रीज तक उसका टेम्परेचर बढ़ाकर और फिर अंदर बॉडी में भेजता है। तो ये काम यदि हम इसके ऑलमोस्ट डिफरेंट जोन्स के अंदर है कि हम बहुत ठंडे या बहुत गर्म वातावरण में, तो आपको समझ आना चाहिए ये मेरे बॉडी के लिए सही नहीं है, इसका बचाव किया जाए। तो इसके लिए हम, या फिर बहुत ज्यादा धूल या मिट्टी प्रदूषण आ गया है तो बचाव किया जाए, तो इस प्रकार की चीजें करना, जैसे कि आप सिंपल सा एक स्कार्फ या कॉटन का एक जो हम छोटा एक गमछा जो हमारे आम भाषा में लोग लेकर चलते हैं, बहुत अच्छी चीज है कि गले पे या नाक पे उसको टाई करके चलते हैं। उसी प्रकार से मास्क मैं बोलूंगी कि कम उपयोग करें, क्योंकि आम जनता को मास्क का प्रॉपर उपयोग नहीं आता, तो इसलिए मैं मास्क कभी एडमिनिस्टर नहीं करती जब तक कि मैं ही उसे ना दूं या अपने ऑब्जर्वेशन में मैं किसी को ना दूं। तो मैं बोलूंगी सिंपल स्कार्फ या कॉटन का दुपट्टा आप लेकर चले, उससे बचाव हो जाएगा। दूसरा, आप जब घर पर आते हैं तो एक बार मुंह अच्छे से धो लीजिए, नाक को जोर जोर से धोइए मत, जोर से ब्लो करके धोना, जिसे हम अपनी आम भाषा में छिड़कना बोलते हैं, जोर से, वो बहुत गलत है, नहीं करना है। नाक भी क्लीन अपने आप होता है, हमें नॉर्मल पानी के छींटे देकर चेहरे पर और हल्का सा नाक को क्लीन करना, बस इतना काफी है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत खतरनाक साबित हो सकता
1: ये
0: है,
1: लगभग सभी व्यक्तियों की आदत हम देखते हैं।
0: जी जी जी, तो मेल्स की तो बहुत ज्यादा आदत होती है कि वो हमेशा मुंह को साफ करते वक्त और गले को साफ करते वक्त जोर से आवाज निकाल के नाक और गले को साफ करते ही हैं, उसके बिना चैन ही नहीं आता।
1: तो इसके भी कोई साइड इफेक्ट है?
0: बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, वन ऑफ एक बहुत ही मेजर साइड इफेक्ट तो है नकसीर छूटना।
1: अच्छा।
0: जिसे हम एपिक्सटेक्सिस बोलते हैं, क्योंकि नाक जो है ना वो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं और बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, बहुत वैस्कुलर है ये, इसमें खूब खून का प्रसार होता है, तो इसकी वजह से यदि हम जोर से उसे साफ करेंगे वो फट सकती है और नकसीर छूट सकती है। और भी दूसरी चीज, ज्यादातर हमें पता नहीं होता, कई बार ब्लड प्रेशर हाई होता है, आजकल आप देखेंगे तो हर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंसिव मिल जाएगा, वो जोर से यदि उसे क्लीन करेगा उसे नहीं पता, वो नाक को जोर से क्लीन करके नकसीर छूट सकती है। और भी एक चीज है, नाक में खपलियां सी जमी रहती हैं, नाक के अंदर कुछ कुछ तो ड्राई हुआ हुआ कुछ जमा ही रहता है, आप उसे क्लीन करते हैं वो खुरेदता हुआ नाक की कोमल चमड़ी को आएगा और उससे वो थमेगी नहीं, तो हमें ये नहीं करना है।
1: मतलब एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है।
0: जी, हो सकता है, बिल्कुल।
1: अब हम बात करते हैं गले की
0: जी।
1: गले में जो हमारा खान पान है, हम बहुत गर्म खाते हैं, बहुत ठंडा खाते हैं, तो उससे सीधा गले पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक साधारण सा सवाल है मेरा।
0: बिल्कुल, तो हमारा जो गला है ना उसकी भी जो चमड़ी है, रेस्पिरेटरी जो एपिथीलियम

0: उसकी, वो बहुत नाजुक होती है कुछ चीजों के लिए, लेकिन वैसे वो बहुत बढ़िया होती है, बहुत गर्म ठंडा एक बार से खा लेते हैं, कुछ ऐसा उसमें ब्रेक नहीं आता। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाती है उसकी वजह से, ज्यादा ठंडे या ज्यादा गर्म की वजह से, और वहां की रोग प्रतिरोधक क्षमता लोकली कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपने तो खा लिया लेकिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से आसपास के वायरस और बैक्टीरिया अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और अंदर चले जाएंगे, और इसकी वजह से आपको फेरेंजाइटिस हो सकती है। तो ये सोर थ्रोट हो जाना, गले में आवाज की खराश होना, हर कभी सर्दी खांसी हो जाना, नजला टपकना जिसे बोलते हैं, यहाँ पे नजला हो गया ठंडा खाते, ये बड़ा कॉमन हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि हमने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का खाना कंज्यूम कर लिया, सही नहीं है ये।
1: देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर तन्वी दिनेश शर्मा आपने बताई, और ENT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन समय अभाव जो घड़ी सुइयां वो हमें इशारा कर रही है कि हमें हमारी बातचीत को यही विराम देना होगा। एक सामान्य सा हम संदेश हमारे श्रोताओं तक आपसे जानना चाहेंगे ENT को लेकर।
0: जी, तीन चीजों का मैं इस माध्यम के द्वारा लोगों को बोलना चाहूंगी। सबसे पहला है कि आज के जो यंगस्टर्स और युवा पीढ़ी है, हम सब लोग साउंड और म्यूजिक बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स बहुत आ गए हैं, ईयरफोन्स का बिना सोचे समझे यूज करे जा रहे हैं सब, उन्हें पता भी नहीं है कि वो इसके थ्रू कितने ज्यादा नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस को न्योता दे रहे हैं। तो इसलिए हमें एक रूल अपनाना चाहिए, 60-60 का रूल, यानी कि 60 मिनट से ज्यादा हम ईयरफोन्स या हेडफोन्स के द्वारा कुछ भी साउंड नहीं सुनेंगे, और 60% से ज्यादा वॉल्यूम नहीं करेंगे, तो हम बहुत ही सेफ साइड में रहेंगे। पहला तो ये हो गया कान का, नाक का जैसे मैंने बताया जोर से उसको क्लीन करना नहीं करेंगे। छोटे बच्चों के अंदर, नाक के अंदर बार बार डालते हैं वो कुछ फॉरेन बॉडी, कभी कुछ डाल लिया, कभी कुछ डाल लिया, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप, छोटा एज ग्रुप है, वो बड़ा ही कॉमन है, उसे नजरअंदाज ना करें। बच्चा सिर्फ क्यूरियस होकर नाक में डाल रहा है ऐसा नहीं है, उसे एडेनोइड जैसी समस्या हो सकती है, उसे खुजली हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है, इसलिए वो बार बार उधर डाल रहा है। गले में यदि आपकी आवाज में होर्सनेस या आपकी आवाज बैठ गई है 2-3 हफ्ते से ज्यादा, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। कॉमन है, हम ऐसे ही काढ़े और गर्म पानी पी के उसे निग्लेक्ट करते रहते हैं, बट ये कुछ और हो सकता है। ये तीन चीजों का ध्यान दिया,
1: घर का वेद बनने के बजाय, और जो एक्सपर्ट है उसकी आप
0: थोड़ा मौका ENT स्पेशलिस्ट को भी देना चाहिए।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात हुई डॉक्टर तन्वी दिनेश शर्मा से, और हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से ENT को लेकर जो जागरूकता है वो और ज्यादा बढ़ी है। आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नाक, कान और गले के लिए सावधानियां विषय पर डॉक्टर तन्वी दिनेश शर्मा से कुंज बिहारी बिरमेवाला की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। स्वास्थ्य आपका कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक।

नमस्कार श्रोताओं, फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक लेकर हाजिर हो गए हैं और आप सभी श्रोताओं के प्यारे प्यारे संदेश फेसबुक के माध्यम से हमारे पास भेजे गए हैं। सतीश अनेजा और विमला अनेजा का ये संदेश शामिल करते हैं कार्यक्रम में। याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधा सजा सुनाता है। भाग बादल जाता है और जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। जीवन का सच्चा साथी हमारा शरीर और आत्मा है, अगर ये साथ नहीं है तो कोई हमारे पास नहीं है। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम है। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता। आपका परिवार कितना खुश है ये बहुत ही मायने रखता है। अलग अलग विषयों को लेकर के आपने ये संदेश हमारे इस कार्यक्रम में लिखकर भेजा है। वेद मिड्डा अलका मिल्डा नएवाला जिला हनुमानगढ़ से लिखते हैं, कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है। वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलता रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने का उपाय करना इंसान के लिए हितकर होता है और एक मृत व्यक्ति कभी नहीं बदलता। इसीलिए उठिए, हर पल अपने आप को बदलने, अपने विचारों को, कृत्यों को बदलने का प्रयास करते

तो जीवन में बदलाव स्वतः ही होने लगेगा। ये अगला संदेश रवि कुमार राहुल कस्वा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से लिखते हैं। हर ठोकर इंसान को गिरने के लिए नहीं लगती, कुछ ठोकर संभलने, सुधरने और सीखने के लिए भी लगती है। केवल धागा लंबा होने से कोई पतंग आसमान तक नहीं पहुंचती, पतंग को आसमान तक पहुंचाने के लिए उड़ाने का तरीका भी आना चाहिए। बहुत ही अच्छी संदेश और बहुत ही अच्छी बात आपने इस कार्यक्रम में लिख करके भेजी है। अगला संदेश गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल, हर्ष और इनके सभी परिवार के लोगों का लिखते हैं। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी से पहले जैसा हो जाए। यानी आप अपने रिश्तों की गर्माहट को तभी बनाए रख सकते हैं जब उसमें कुछ लचीलापन रखेंगे, तभी आपके रिश्ते हैं वो सुदृढ़ होंगे और लंबे समय तक है वो चलेंगे।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से कार्यक्रम दिल से दिल तक। इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं फेसबुक के माध्यम से भेजे गए आपके कमेंट्स, और ये संदेश हमें भेजा है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरवा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव ने। भरोसा यदि खुद पे रखो तो वो ताकत बन जाता है, दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाता है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: श्रोता इस समय आकाशवाणी चूरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक। इस कार्यक्रम में अगला संदेश शामिल करते हैं सुखवेंद्र सिंह जोड़ा, कृष्ण पार्क दिल्ली। सुखवेंद्र सिंह जोड़ा सिट्टी दीवान, आप लिखते हैं पिंटू दीवान कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए बहुत से लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन उसमें पीछे से पैर को खींचने वाले हमारे ही आसपास के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप परवाह न करें और

आगे से आगे बढ़ते चले जाइए। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है हुकुम कर्मकर और सुनीता कर्मकर ने बरेडी मध्य प्रदेश से। आप लिखते हैं कि अगर आप जैसा व्यवहार किसी के साथ करते हो वैसा ही आपको पुनः मिलता है। अगर आपको वो व्यवहार पसंद नहीं है तो दूसरों के साथ आप वैसा व्यवहार मत कीजिएगा। अपने व्यवहार में आप स्वयं ही परिवर्तन लाएंगे तो आपका जीवन तो सुखद रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ आप जैसा चाहते हैं वैसा लोग भी आपके प्रति बनने का प्रयास कर सकेंगे। भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से लिखते हैं विष्णु मिस्की रितिका चंद्रकला गणेश काशी संगीता आरोही और प्रियांशी। आप लिखते हैं कि जब रास्ते धुंधले पड़ जाए और उम्मीद भी साथ छोड़ने लगे तब हार मानने से पहले खुद पर भरोसा करके एक और कदम बढ़ा लेना, क्योंकि अक्सर किस्मत का नया अध्याय वहीं से शुरू होता है जहां इंसान को सब कुछ खत्म सा होने लगता है। अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह आती है।

कार्यक्रम दिल से दिल तक में अगला संदेश हमें लिख भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन ने। जिंदगी में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे को पहचान सके, क्योंकि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। हर अनुभव एक शिक्षा है, हर बदलाव एक संकेत और हर क्षण भगवान की योजना का हिस्सा।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,

श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम दिल से दिल तक। इस कार्यक्रम में फेसबुक के माध्यम से भेजे गए आपके कमेंट्स शामिल करते हैं। ये अगला संदेश मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, रितिका, बलवीर, आप सभी लिखते हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। आप लिखते हैं कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को शामिल रखना जो आशावादी है और जो हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए ही प्रयास करते हैं और आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत जुटवाते हैं, तो ऐसे लोग ही आपको आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। अगला संदेश लिखते हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि और इनके परिवार के सदस्य। आप लिखते हैं कि परिवार में एक साथ मिलकर के रहना ही सबसे बड़ी खुशी है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें इस खुशी को प्राप्त करने के लिए अपने बात जो मन में आई है उसको अपने मन में ही रखना पड़ता है। अगर मुख से बोलें तो जो रिश्ते हैं उसकी में मधुरता कम हो जाती है, तो कई बार रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए किसी कड़वी बात को कहने की बजाय है वो सरलता से

ये अगला संदेश है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक और चेतना नाहटा लिखते हैं कि दोस्ती एक ऐसा अनमोल रिश्ता है, अगर आपको जीवन में अच्छे दोस्त मिल जाए तो कभी मत खोना, हमेशा उनको अपने पास रखने का प्रयास करना।

कार्यक्रम में अगला संदेश शामिल करते हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन साह पल्लवी साह प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगला और राजेंद्र साह ने आप लिखते हैं जिनके मन में विश्वास की पक्की डोर और इरादों में दृढ़ संकल्प हो वहां व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता। सही इरादों के साथ वह हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखता है। जीवन में फिर चाहे परिस्थिति कोई भी हो क्यों ना हो वह सदैव सफल होता है और यही उस व्यक्ति की सही होने की पहचान होती है। और ये एक और संदेश हमारे पास है, लिखा है हमें भैरू लाल वाक्तरिया धाकड़ उल्हेन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं इन दिनों नौतपा की गर्मी पड़ रही है। कहा जाता है कि नौतपा जितना तपता आने वाला साल उतना ही अच्छा निकलता है। उस समय किसान अपने खेतों में हल चलाकर आगामी फसल बोने हेतु तैयार करते हैं। तो खेतों में बढ़े मिट्टी के ढेले तप तप कर बिखरते हैं जिससे खेत उपजाऊ होते हैं। तो ये जो आपका मौसम चल रहा है उसी के अनुरूप आपने ये संदेश हमें लिख करके भेजा है। अगला संदेश हमारे पास है वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से लिखते हैं कि उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ। उंगली उठे और उंगली से मिले तो लाजवाब, यही है जिंदगी का हिसाब। बहुत ही सुंदर बातचीत लिख करके हमें इस कार्यक्रम में आपने भेजी है। मोताला महाराष्ट्र से लिखते हैं विजय सुरलकर रतनमाला, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास ही वह मजबूत नीम है जिस पर हर रिश्ते सफलता और जीवन की इमारत टिकी है। ये एक ऐसा मूलधन है जो किसी भी चीज से खरीदा नहीं जा सकता बल्कि इसे अपने कर्मों और व्यवहार से कमाना पड़ता है। ये विश्वास ही है श्रोताओं जो आपका और हमारा रिश्ता बनाए हुए है। इस कार्यक्रम में आप अपनी बात इसी विश्वास पर लिख करके भेजते हैं कि कार्यक्रम में हमारी जो संदेश है वो शामिल होंगे। तो ये विश्वास ये रिश्ता हमारा यूं ही बना रहेगा इस कार्यक्रम से। सही राम नगर पिथीसर से लिखते हैं हरि सिंह नायक चिक्की रवि और लक्षिता नायक लिखते हैं एक बाग में एक आम का पेड़ जो हमेशा दुनिया को खुश देखकर खुश होता और चिड़िया भी उसी पे गाती, लोग उसकी छांव में सुकून से बैठ जाते। एक दिन उसके पत्ते गिरने लगे, धीरे धीरे लोग दूर होने लगे, चिड़िया भी घर छोड़कर चली गई, पेड़ अकेला रह गया और उसे लगा कि शायद उसकी कीमत कम हो गई है। फिर मौसम बदला, नए पत्ते आए और फिर वही चिड़िया फिर लौट आई। तब पेड़ समझ गया दुनिया में काम और बदलना और तुम्हारा काम है मजबूत रहना। इसीलिए ये संदेश कहा गया है कि हालात जैसे भी हो खुद पर भरोसा मत छोड़िएगा और अपनी प्रगति

करते रहिएगा। अगला संदेश लेते हैं साधुल शहर जिला श्रीनगर गंगानगर से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। आप लिखते हैं, मनुष्य जीवन का सबसे अनमोल समय वर्तमान समय होता है, क्योंकि बीता हुआ कल वापस नहीं आता और आने वाला कल किसने देखा है। इसलिए जो पल आपके साथ है वही सबसे मूल्यवान है और इसकी कीमत समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। भविष्य का निर्माण करना आपका आज का वर्तमान ही है और आपके आने वाले कल की नींव रखता है। हमें चाणक्य नीति में भी ये सिखाया गया है कि इसी बात पर जोर दिया गया है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हर पल सदुपयोग बुद्धिमानी के साथ समय का उपयोग कीजिए। स्वस्थ जीवन ही कुशल जीवन है, इसलिए अपने जीवन में योग को जरूर स्थान दीजिएगा। और ये संदेश लिखते हैं सुरेश खुराना पंपी, किरण खुराना, लव्या आरव, एस के पंपी। आप लिखते हैं MLB रोड ग्वालियर से। लिखते हैं, दिलों का रिश्ता ऐसा है जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसे संभाल के रखिएगा, क्योंकि जुड़ तो दिल जाते हैं लेकिन जब टूटता है तो पुनः जुड़ता नहीं है, इसीलिए अपने रिश्तों को जरूर संभालिए। झज्जर हरियाणा से लिखते हैं बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। आप लिखते हैं कि जो संगीत है वो दिलों को सुकून पहुंचाने वाला होता है और संगीत के माध्यम से व्यक्ति है वो कई तरह के तनाव से मुक्त रहता है और जीवन में शांति आ सकती है। तो इसी कार्यक्रम में हम आपके संदेश के दौरान है वो बहुत से गीत भी आपको सुनाते हैं। तो श्रोताओं, ये था आज का फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। कार्यक्रम से हमें अनुमति, नमस्कार। अभी आप फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 10 बजने को हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं, और ये रहेगा
0: जी। मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे, थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4
0: जी।
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया
0: जी।
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास, मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी, आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होता है ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं, एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके
0: जी।
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है
0: जी।
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने इससे अगर शुरुआत की।
0: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं? खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते, हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
0: सप्लीमेंट्स,
1: मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है? मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन, जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं, और मन से ही हो जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते हैं।
1: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आते हैं जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है
0: जी,
1: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली

0: किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा केदारनाथ से।
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय, लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गोइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायराइड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी में।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम T3 T4 TSH का
0: जी।
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है, टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा,
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी।
0: अच्छा,
1: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
0: अच्छा,
1: और ये अनिवार्य है।
0: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया,
1: पॉजिटिव
0: जैसा कि आपकी यूनिट के बाहर या कम,
1: हाँ, रेंज के बाहर,
0: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
1: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
0: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए
1: अगर
0: है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
1: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
0: जी,
1: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: जी, जी जी।
1: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये लेवल क्या है,
1: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
0: जी जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीत में बनाना होगा।
1: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
0: काला बाजार,
1: काला बाजार,
0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी जी,
1: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है, मतलब लूज मोशन। अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है
0: जी।
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम हो, त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
0: इसका
1: क्या है,
0: किधर है,
1: एग्जैक्टली रूट, जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
0: जी,
1: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले, या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
0: जी।
1: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका जो हाँ क्योर है वो जल्द हो जाएगा।
0: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है, लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
0: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
1: हाँ।
0: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
1: जरूरत
0: लेकिन
1: है।
0: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकेंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं, अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हम को। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
0: जी,
1: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े है, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है आग बबूला होना।
0: जी जी,
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
0: जी जी,
1: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान
0: जी।
1: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
0: फोबिया,
1: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
0: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाए।
1: तब क्या, नहीं, तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
0: सब ठीक है।
1: तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
0: जी।
1: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
0: फिजिकल,
1: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड, ये वो वाला ना,
0: वो सारी विषैली चीजें,
1: हाँ,
0: तत्व जो है अंदर रहते हैं,
1: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
0: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
1: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
0: जी, जी, जी।
1: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं।
0: जी।
1: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथिक का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
0: इतिहास क्या है परिवार का।
1: अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
0: हेरिडिटरी कैरेक्टर,
1: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
0: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
1: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
0: बैजू बावरा।
1: बैजू बावरा
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का यह नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के गूगल पे सर्च करके सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है, मगर ये नाम सुनने को इजी या लक्षणें जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात,
1: दवाई तो वही है, लक्षणें भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना
1: बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देख के
1: लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
0: एक इंडिकेशन होता है,
1: एक इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
1: बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है,
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल, आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा
0: मायूस
1: सा बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है, हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है, और वो जब भी पूछते हैं तो थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
1: क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
0: सामान्य अवस्था में आ
1: रहा है। सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले,
0: जी,
1: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
0: जी जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
1: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत, क्योंकि सिर्फ पैथी सिर्फ दवाइयां कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पोर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूं तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई जरूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
0: कोई भी मौसमी एक जो मौसमी फल है खाना, खाना चाहिए,
1: खाना हो या फल हो ये खाइए, और पानी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज्यादा आप पानी पियोगे, एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
0: बहुत प्रेशर पड़ेगा।
1: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
0: ओहो,
1: यस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा।
0: तो ये सावधानी बहुत जरूरी है रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार
1: उतना ही।
0: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें है।
1: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
0: जो चाइनीज फूड में ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है,
1: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए,
0: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए।
1: हाँ, कम कर दीजिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
0: कंट्रोल
1: करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा,
0: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
1: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या, मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
0: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए,
1: एक अच्छा सा गाना, चलते चलते मैं हूँ।

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर ये कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण।

अब से थोड़ी देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 12:00। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर दिन में 12:30 पर। कलाकार होंगे डूंगराम भाट एंड पार्टी। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे दिन में 1:00। 1:05 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत। चर्चा होगी प्यार के साथ साथ पर्याप्त अनुशासन भी जरूरी है, बीमारियों के कारण और बचाव। जानकारी दी जाएगी पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। दिन में 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने, समय रहेगा दिन में 2:30।

शाम 4:58 पर हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5:00। चर्चा होगी एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री में करियर, शिक्षा का बदलता स्वरूप। जानकारी दी जाएगी एथिकल हैकिंग क्या होती है। शाम 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 6:00 हिंदी में समाचार, 6:05 अंग्रेजी में समाचार और 6:20 में संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फिल्मी देशभक्ति गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45

पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 7 बजे। चर्चा होगी किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रामीण महिलाओं का कृषि में योगदान। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे शाम 7:30 पर।

आकाशवाणी के 90 साल एक गौरवशाली यात्रा विषय पर डॉक्टर मंजू शर्मा प्राचार्य लोहिया कॉलेज से भेंटवार्ता आप सुनेंगे। समय रहेगा रात्रि 8:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे News@9 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। मन भवन ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुन रहे थे। हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 11:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है अंदाज। गीत रचना समीर की है और संगीत रचना नदीम श्रवण की।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

आनंद बख्शी के बोलों को अभी आप सुन रहे थे अन्नू मलिक की धन पर। ये फिल्म थी आरजू और आवाजी थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी चूरू से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। शबनम, सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल की। गीत रचना रानी मलिक की है और संगीत रचना अन्नू मलिक की है।

सौदागर फिल्म के इस दोगाने के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
2: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे

0: इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: योगेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधे नगर अकोला।

0: आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, सप्ताह हम

0: श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 88

ever visited a zoo?

recite the spoken word.

0: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
1: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
2: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
3: वीर जोरावर की जय।
4: वीर

0: खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनवाने का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज हो रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
0: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
0: जी जरूर, हुक्म करें।

0: हैरान थे।
1: जी हाँ, जिरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
3: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साई की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
4: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
4: जो हुकुम सरकार।

0: तुम चारों तरफ से घिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी।
2: हुजूर,
0: बांटो इस बच्चे को संजीव से।
1: छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सालार जंग। मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: चलो इसको,
1: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।

0: चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
1: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
2: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
3: अप्पा, ये नहीं हो सकता।

0: हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
1: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं।

0: You are a fool.
1: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
0: काला पानी की सजा?
1: हाँ, काला पानी की सजा।

0: है।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूँ मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूँ। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूँ।
2: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओं, अभी

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

डुंगराम भाट एंड पार्टी की गई इस लोकरचना के साथ ही अब आज के लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के सुर यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार देखे जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर स्थित सांचू सीमा चौकी पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। श्री शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को भी सीमावर्ती क्षेत्रों को समर्पित किया। इसके जरिए भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के गांवों में शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार सहित बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के गांवों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, बीएसएफ डीजी प्रवीण कुमार, आईबी चीफ तपन डेका और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। गृहमंत्री बीकानेर में बीएसएफ मुख्यालय पर सीमा सुरक्षा पर मंथन करेंगे। इस समन्वय बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के उच्च अधिकारी तथा बीएसएफ के अधिकारी शामिल होंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। डॉ जयशंकर ने जोर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक विकास और स्थिरता का प्रेरक बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समुद्र से संबंधित मामलों में सहयोग करने वाले लोकतांत्रिक देशों और बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में क्वाड देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए कूटनीतिक विश्वास बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक अवसरों तथा विकल्पों को प्रोत्साहित करने के साथ ही आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। विदेश मंत्रियों की ये बैठक वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट के समय में हुई है। भारत ने क्वाड समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में ये बैठक आयोजित की। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से देश में बीमारियों की रोकथाम से जुड़ी सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन देन है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज और 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। इस बीच 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दाऊदी बोहरा समाज की ओर से आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर अजमेर में शिवाजी पार्क स्थित बोहरा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की गई। इसके बाद सबने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि मुख्य रूप से बकरीद का पर्व 28 मई को मनाया जाएगा। राज्य में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। दिन में सूरज की तेज तपिश लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं रात में भी गर्म हवाओं का असर देखा जा रहा है। कोटा में अधिकतम तापमान कल 45 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं चित्तौड़गढ़, चूरू, करौली, दौसा और झुंझुनू में रात भर गर्म हवाओं का प्रकोप रहा। हनुमानगढ़ और अलवर में रात का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राजधानी जयपुर में दिन का पारा 43.6 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर में सड़कों पर पानी के छिड़काव से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। लू और उमस के कारण पर्यटन स्थल भी सूने नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कल शाम से मौसम में हल्का बदलाव होने का पूर्वानुमान बताया है। उत्तर पूर्वी जिलों में 28 मई से आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी। वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। वहीं कल मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और विजेता टीम क्वालिफायर 2 में पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

स्वागत है बहनों आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। और आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ हाजिर हूँ मैं आपकी बहन कोमल राज पुरोहित। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार।

बहनों, गर्मी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। हम देख रहे हैं कि इन दिनों अगर हम थोड़ा सा भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत बार जो है वो सोचना पड़ता है। हमें लगता है कि क्या हमारा काम इतना ज़रूरी है कि हमें घर से निकलना चाहिए या नहीं, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हमें अगर दो बार सोचना पड़े तो इसका मतलब तो यही है कि या तो हमारा काम इतना ज़रूरी नहीं है या हमारा वातावरण जो है वो अभी हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो काम जरूरी हो और वातावरण अनुकूल ना हो तो ऐसे में हमें बहुत ही अधिक जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि अगर हमारा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे गर्मी में अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें बहुत सारी

बेहोशी आदि समस्या जो है वो हमें हो सकती है। एक समस्या बहनों जो हम सभी को देखने को मिलती है वो है रैशेस। जी हाँ, गर्मी में हमारे शरीर पर खुजली आती है और उससे हम जो है वो बिना देखे कि हम किस चीज़ से खुजला रहे हैं और हम उन चीज़ों पर जो है वो अपनी खुजली शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में हमारी त्वचा पर जो है वो चुभन वाले रैशेस जो है वो हो सकते हैं, लाल लाल से दाने हो जाते हैं। ये अत्यधिक गर्मी में जो बैक्टीरिया पनपते हैं और हम जो खाना खाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन्फेक्शन वाला दूषित बासी खाना, जो जंक फूड हम खाते हैं, उसके कारण जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो हमारी पेट की समस्या है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमारी पेट की जो समस्या है वो सारी समस्या अगर हम जंक फूड खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, तो इससे भी जो है ये समस्या हो सकती है। तो गर्मी से बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे शरीर में पनपने लगती हैं, लेकिन इसके लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो हमें पानी खूब पीना है, हल्के कपड़े पहनने हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, सूती जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनका चयन हमें अत्यधिक करना है। खान पान का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, हरी सब्जियां हैं, पेय पदार्थ है, ऐसे पेय पदार्थों का चयन करना है जिनसे हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं, जिनको अगर हम सेवन करते रहते हैं तो हम लू लगने से जो है वो बच जाएंगे। और इसके अलावा जो है स्वच्छता का ध्यान रखना है, खान पान भी हमारा जो है ताज़ा होना चाहिए और हल्का होना चाहिए, क्योंकि अभी जो गर्मी का है ऐसे में हमारा पाचन तंत्र जो है वो हल्का भोजन जो है वो अच्छे से पचा सकता है और ऐसे में हमें भूख भी बहुत कम लगती है। तो अगर हम हल्का भोजन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो और अधिक बेहतर रहेगा। तो गर्मी में बहुत अधिक बीमारियां हमें हो जाती है, लेकिन अगर हमें इनसे बचाव रखना है, अगर हमें इनसे बचना है, तो हमें कुछ सावधानियां जो हैं वो अपनाते हुए ही चलना है ताकि हम इस गर्मी से बच सके और कोशिश करें कि जितना भी हमारा ज़रूरी काम हो उसे सुबह या शाम के समय जो है वो ही तभी करें, धूप में जो है वो कम से कम बाहर निकले।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बहनों, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें जो है गर्मी से बचाव के लिए बहुत अधिक पानी जो है वो पीना चाहिए। बहुत अधिक पानी से हमारा अभिप्राय ये है कि हमारा जो शरीर है उसमें कितनी अधिक मात्रा में हमें पानी की

आवश्यकता होती है उतना ही पानी जो है वो हमें पीना चाहिए। तो बहनों, इस पर भी जो है हमें गौर जरूर करना चाहिए कि हमारे शरीर को कितने पानी की जो है वो आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम बहुत अधिक पानी पी लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए जो है वो बहुत अधिक नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा पानी पी जाते हैं तो इससे खून में सोडियम का जो स्तर है हमारा वो बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है और वो कम हो जाता है, जिससे हमारी कोशिकाएं जो हैं वो फूलने लगती है और हमारी जो मस्तिष्क में सूजन है इसकी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इसके और भी हमें विपरीत प्रभाव देखने को पड़ते हैं, जैसे कि मस्तिष्क और नसों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, किडनी पर इसके प्रभाव पड़ते हैं। हम देखते हैं कि हमें बार बार पेशाब आने लगते हैं, किडनी पर इसका दबाव पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट जो असंतुलन होता है हमारा वो हो जाता है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, सर दर्द है। तो हमें पानी की जो मात्रा है अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही जो है वो निर्धारित करनी चाहिए। जैसे कि अगर वयस्क शरीर है तो उसके लिए 2 से 3 लीटर जो पानी है वो पर्याप्त होता है। 2 से 3 लीटर पानी का मतलब होता है 9 से 13 गिलास तक का जो पानी है वो हमें पीना चाहिए। और शिशुओं के लिए जो पानी होता है उसकी भी अलग जो है उसका पैमाना होता है, माप होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो पानी पीना चाहिए। तो अलग अलग स्तर पर हमें जो है वो अपना माप ध्यान होना चाहिए कि किसके अनुसार हमें पानी पीना चाहिए। किशोर होते हैं उनके लिए जो है, जो कि 14 से 18 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए 1.5 से 2.5 लीटर तक का जो पानी होता है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। इससे ऊपर जो है 3 लीटर पानी जो है वो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। तो हमारे शरीर की अवस्था के अनुसार ही हमें पानी की मात्रा जो है वो लेनी चाहिए। इसके अंदर जो भी हम पेय पदार्थ पीते हैं, जैसे कि दही है, छाछ है, लस्सी है, या फिर अगर कोई जूस हम ले रहे हैं, लिक्विड कोई भी पेय पदार्थ अगर हम ले रहे हैं तो वो इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि अलग से इनकी कोई मात्रा जो है वो नहीं होती है। पेय पदार्थ हमारे शरीर में पानी की पूर्ति जो है वो समय समय पर करते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो है वो हमें विशेष तौर पर ध्यान जो है रखना चाहिए कि पानी पीना है, लेकिन अपने शरीर के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखते हुए जो है पानी का चयन करना, पानी का जो है वो सेवन करना है और धूप से अपने आप को बचाना है।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: बहनों, जब हम गर्मी पे चर्चा कर रहे हैं कि गर्मी जो है वो इतनी ज्यादा हो रही है कि ऐसे में हमारे जो है हाल बेहाल हो रहे हैं, पसीने से तो हम जो है लथपथ ही रहते हैं और हमें जो है इतना परेशान करता है ये पसीना, तो हमें ऐसे लगता है कि ठंडी ठंडी छांव में एसी, कूलर, पंखा जो भी हमें मिल जाता है उसकी छांव में जो है वो हम बस बैठे ही रहें। और हमने अभी बात की कि हमें पानी जो है वो कितना पीना चाहिए ताकि पसीना भी जो है वो हमारा सही मात्रा में निकल सके। तो हमारा पसीना

आना क्या हमें बताता है कि हमारा सेहत जो है, हमारी सेहत जो है वो अच्छी है या बुरी है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा पसीना भी जो है वो हमें हमारी सेहत का हाल बताता है। वो कैसे बताता है? क्योंकि पसीना आना हमारे शरीर का एक प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम है जो हमारी सेहत का सीधा हाल बताता है। पसीने की मात्रा, महक और आने का तरीका कई अंदरूनी बीमारियां जैसे कि तनाव है और हार्मोनल असंतुलन में छिपे हुए जो संकेत हैं उनके बारे में जो है वो हमें बताते हैं। जरूरत है इनके ऊपर हमें जागरूक होकर इनको पहचानने की। तो अगर हम इनको पहचान जाते हैं कि पसीना जो है वो हमारा सामान्य पसीने है या फिर हमारा किसी संकेत से जुड़ा हुआ है, तो हम बहुत सारी बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। हमारे शरीर ही से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें समय समय पर हमें पहचानना होता है। हम समय समय पर इन सभी चीजों पर चर्चा भी करते हैं। आपको अवेयर रहने की जरूरत है कि कब कौन सा संकेत जो है हमारे शरीर का हमें किसी बीमारी की ओर संकेत कर रहा है। अगर हम समय पर इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो हम सचेत होकर किसी बड़ी बीमारी से जो है वो बच सकते हैं, उसका समय पर इलाज जो है वो ले सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे सामान्य पसीने की। जी हाँ बहनों, अगर गर्मी में या वर्कआउट के दौरान जो पसीना आ रहा है वो बिल्कुल सामान्य पसीना है, वो स्वस्थ है क्योंकि ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर से जो है अशुद्धियाँ और टॉक्सिक्स जो है वो बाहर निकलते हैं जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो विषैले तत्व जो निकल रहे हैं हमारे शरीर से तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छे जो है वो माने जाते हैं। और इसी की तुलना में अगर हमें बहुत ज़्यादा अचानक से गर्मी नहीं है और अचानक से ही हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, घर पर बैठे बैठे सामान्य तापमान में भी हमें बहुत अधिक पसीना आता है, तो ये हमारे हाइड्रोडोसिस जो थायराइड की समस्या है या दिल से जुड़ी जो परेशानियां हैं उसका संकेत हमें देती हैं। रात में हमें सोते हुए भी पसीना आता है। अक्सर हम देखते हैं कि रात को हम सोते हैं कूलिंग सिस्टम के अंदर और हमारी टी शर्ट या हमारी चद्दर जो है वो भीग सी जाती है, तो ये किसी संक्रमण या हार्मोनल बदलाव का जो है वो लक्षण हो सकती है। हमें इसके लिए सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और अगर हमें बहुत कम पसीना आ रहा है, गर्मी है या मेहनत के बावजूद भी हमें बिल्कुल पसीना नहीं आता है, तो ये भी हमारे लिए जो है वो एक संकेत ही है। ये डिहाइड्रेशन या स्किन की ग्रंथियों से समस्याओं का जो है वो संकेत हो सकता है। इसके साथ बहनों, अगर हमारे पसीने से बहुत अधिक तीव्र दुर्गंध जो है वो आती है, पसीने में कोई बदबू नहीं होती है लेकिन बैक्टीरिया के संपर्क में आने से ये जो है वो बदबू महकने लगता है, इसकी बदबू हमें आने लगती है। लेकिन यदि पसीने की गंध बहुत तेज या असामान्य हो तो ये हमारे खान पान, मेटाबॉलिज्म या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके साथ साथ कई बार हमने अपने अंदर या घर परिवार में ये महसूस किया है कि कई लोगों के हथेलियों या फिर पैरों में भी जो है वो पसीना आता है। ये अक्सर घबराहट या तनाव या एंजाइटी के कारण जो है हथेली या पैरों में जो है वो पसीना आने लगता है। तो ऐसे में अगर ऐसे कुछ लक्षण हमें देखने को मिलते हैं तो हमें जो है वो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके ऊपर जो है वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जो है अपना हमें घरेलू जो भी उपचार है वो भी हम ले सकते हैं और चिकित्सकीय जो परामर्श के अकॉर्डिंग जो है वो हम दवाइयां भी जो है वो ले सकते हैं ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें।

बहनों, हमने बात करी कि गर्मी में जो है हमें अपना ध्यान रखने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब गर्मी में अपना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है तो हम अपने बच्चों को जो है वो कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, बच्चों का तो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है हर ही चीज़ के अंदर, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे स्कूलिंग टाइम हो, चाहे घर पर हो, कैसा भी समय हो, हमें अपने बच्चों के ऊपर विशेष तौर पे जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पेरेंटिंग के अंदर कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, वो है हमारे प्यार के, हमें जो हम जो बच्चों के साथ में प्यार करते हैं उसके ऊपर जो है वो हमें गौर करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बच्चों को कुछ भी जो है वो नहीं कहते हैं, हमें लगता है कि हमारे बच्चों को हम अगर प्यार से बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो समझाते हैं तो उन्हें आसानी से समझ में आ सकती है और उन्हें डांटने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार इसके विपरीत हमारे साथ ये भी होता है कि हमें अपने

बहुत अधिक प्यार आता है, लेकिन हम उन्हें चाहते हैं कि अगर हम प्यार करेंगे तो ये कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं ये किसी चीज का गलत मतलब ना निकाल ले, और इसके विपरीत हम सिर्फ उनके साथ जो है वो सख्त जो है वो रहते हैं। तो बहनों, प्यार के साथ साथ अनुशासन जरूरी है, लेकिन प्यार भी जरूरी है उनके लिए। हमें थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत होती है कि जब हम प्यार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज के लिए तुरंत हाँ कहें। हमें बच्चों के अंदर ये चीज जरूर डालनी चाहिए कि किसी भी चीज के लिए हाँ नहीं होती है। शुरुआत से ही उन्हें ना सुनने की आदत जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम शुरुआत से ही हर बच्चों को यही बोलेंगे कि हाँ हम ये आपका काम कर देंगे, ये चीज आपको मिल जाएगी, तो उन्हें ना सुनने में जो है वो दिक्कत होती है। और जब वो ना उन्हें अचानक से मिलती है तो हम देखते हैं कि उनका जो बर्ताव है वो अलग सा हो जाता है, उन्हें बहुत ही गलत लगता है, उन्हें उसका बिल्कुल भी जो है वो अपने असहज जो वातावरण है वो उन्हें महसूस होने लगता है, और इसका प्रभाव जो है बच्चों पर विपरीत पड़ता है। तो बच्चों में अगर हमें अनुशासन रखना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है बच्चों को ना सुनने की आदत जो है वो डालनी चाहिए। बहनों, प्यार के साथ साथ अनुशासन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ व्यक्ति को प्यार जो है भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, सुरक्षित बनाता है, बच्चों में ये भावना लाता है कि हाँ अगर हमें कोई भी काम पड़ता है तो हमारे पास में जो है हमारे माता पिता हैं, हमसे बड़े हैं, वो हमारा कोई भी काम जो है वो आसानी से कर देंगे। वही अनुशासन हमारे बच्चों को सही दिशा, आत्मनियंत्रण और सफलता की ओर ले जा सकता है। लेकिन जरूरी होता है इन दोनों के अंदर ही सही संतुलन, क्योंकि कोई भी रिश्ते के अंदर हमारी जो परवरिश है खास तौर पर उसमें हमारा जो ये संतुलन होता है अनुशासन का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वही हमारी परवरिश को परिपक्व और सार्थक जो है वो बनाता है। अनुशासन का अर्थ कभी भी कठोरता, चिल्लाना या सजा देना नहीं होता है, लेकिन जब अनुशासन को हम प्यार से, धैर्य से और संवाद के साथ जोड़ देते हैं तो ये हमारे विकास और सकारात्मकता का जो है वो आधार बन जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम बच्चों के साथ में कोई संवाद करते हैं, किसी भी चीज की बात करते हैं, तो हमें अपने सकारात्मकता को जो है अपना आधार बनाना चाहिए। हमें किसी भी बात को अगर मनवाना है तो उसको धैर्य के साथ, प्यार के साथ जो है बच्चों के साथ समझा कर जो है वो उस चीज को करवाना चाहिए, क्योंकि अनुशासन जो है वो हमारे जीवन में जीने का एक तरीका है। अगर हम सही ढंग से अपना जीवन जीना चाहते हैं तो हमें जो है अनुशासन आना चाहिए। बहनों, ये छोटी छोटी सी आदतों के साथ ही हम जो है वो जोड़ सकते हैं। जैसे कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो सबसे पहले एक अनुशासन के तौर पर ही कि हमें ये सिखाना चाहिए कि आपको अपना स्कूल बैग जो है वो आते ही जगह पे रखना है, लंच बॉक्स है और जो टिफिन बॉक्स है आपका, वो बॉटल, ये सभी चीज़ें जो है आपको रसोई में लाकर रख कर देनी चाहिए। आपको अपने शू जो है वो शू रैक के अंदर रखने हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है बच्चों की, और ऐसे में हम इन चीज़ों को जो है धीरे धीरे अपने बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उन्हें इस चीज़ का महत्व बता सकते हैं कि अगर हम अपनी चीज़ों को सही ढंग से रखते हैं, अगर हम कोई भी काम को अच्छे से करते हैं तो ये हमारे लिए जो है वो कितने फायदेमंद होंगे। इसी पर हम अपनी चर्चा जो है वो आगे जारी रखेंगे। पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे थे कि हमें जीवन में कितना अनुशासन जो है वो जरूर, कितना मतलब हमारे जीवन में जो है अनुशासन कितना जरूरी है, ये कितना हमें जो है वो समझने की जरूरत है। तो बहनों, जीवन में अनुशासन हमें सही दिशा, समय प्रबंधन, एकाग्रता जो है ये सभी चीजें प्रदान करता है। किसी भी लक्ष्य को अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो अनुशासन ही है जो हमारी महत्वपूर्ण कुंजी है। इसके बिना हम सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी काम को निरंतरता से करना है और इसका बेहतर परिणाम प्राप्त करना है, तो हमें अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना है कि जीवन में अनुशासन जो है वो बहुत ही जरूरी है। और ये हमें भी बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है कि अगर हम अपने बच्चों को प्यार जताते हैं तो उनके साथ में अनुशासन भी सिखाना जो है उन्हें बहुत जरूरी है। इससे हम उनके जीवन को बेहतर जो है वो दे सकते हैं, सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। बहनों, कार्यक्रम जो है वो और बात करने की इजाजत आपसे नहीं दे रहा है, तो आज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रही हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से पहले मिड डे न्यूज, फिर 2:15 पर दोपहर समाचार लिखे जाएंगे।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमेरिका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश

0: मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @eairnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि मुन्नार कुमारकोम निलाक्कल कुमिली सबरीमला वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुर्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए दबंग फिल्म का गीत, आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: लुटेरा फिल्म का गीत सुनिए, आवाज है मोनाली ठाकुर की।

0: आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं शागिर्द फिल्म का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

चमेली फिल्म के गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की पहली सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 4:58 पर दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम युववाणी जो शुरू हो चुका है ओनली ऑन 100.7 एफएम पर। और आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे आपकी रेडियो दोस्त कोमल दैया को
1: और आपकी रेडियो दोस्त डिंपल शर्मा को। प्रोग्राम सुन रहे तमाम श्रोताओं को हमारा
0: नमस्कार।

0: जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम चल रहा है युववाणी, और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो मंगलवार का खास सेगमेंट होता है आपका कल, जिसमें हम आपके करियर से जुड़ी बातें जो है वो आपके साथ करते हैं। क्योंकि आज के अगर हम बात करें आज के सेगमेंट के बारे में, तो हम देखें कि जिंदगी में हर कोई डिम्पल एक अच्छा भविष्य चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, और कोई इंजीनियर बनना चाहता है, और फिर कहें तो कोई कलाकार या उद्यमी बनना चाहता है। लेकिन सिर्फ सपना देखना ही काफी नहीं होता, उन सपनों को पूरा करने के लिए सही दिशा, मेहनत और आत्मविश्वास है वो भी बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल कोमल, आज का जो समय है वो तेजी से बदल रहा है। नई नई जो टेक्निक्स है वो आ रही है, नए रोजगार के अवसर है, नए अवसर जो है हर दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने करियर का चुनाव जो है केवल दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि अपनी रुचि और क्षमता को पहचान कर करें, क्योंकि वही काम हमें आगे बढ़ाता है जिसमें हमारा मन लगता है, उसी काम को हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि युवा इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है वो चुने, हम अपना जो भविष्य है वो कौन से सेक्टर में लेके जाएं, कौन सा कोर्स करें, अपने फ्यूचर में कौन सी नौकरी हमारे लिए बेहतर होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता, हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है, अलग प्रतिभा होती है, अलग टैलेंट होता है। इसलिए सबसे पहले जो है वो खुद को समझना जरूरी है कि अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में शानदार जो अपना अवसर है वो देख सकते हैं। अगर आप यूं कहें कि टेक्निक में अगर आपके इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर है, AI है, डिजिटल मीडिया है, इन सारे सेक्टर्स में जो है वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं हम देखें कि कृषि है, खेल है, संगीत है, रेडियो, पत्रकारिता, या फिर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे काम है जो आज भी युवाओं के लिए बहुत सारे नए रास्ते जो है वो खोल सकते हैं।
1: बिल्कुल कोमल, और करियर जो है केवल नौकरी पाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने

सपनों को जीने का रास्ता है, इसलिए असफलता से डरने की बजाय उससे सीखना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता जो है वो शोर मचा दे। और आज के जो युवा के पास इंटरनेट और जानकारी की ताकत है, ऑनलाइन कोर्स है, स्किल ट्रेनिंग है और नई भाषाएं सीखकर भी अपने भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही समय का उपयोग और जो पॉजिटिव थिंकिंग है जो हमें मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है, और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से ही शुरुआत करना जरूरी है। छोटे छोटे जो कदम हैं वो ही बड़े सपनों को सच बनाते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी में जो हमारा आज का खास सेगमेंट है आपका कल, वो भी आपका साथ देता है। हम बहुत सारी वैकेंसीज इसमें लेकर आते हैं, बहुत सी जो बातें हैं जो आपकी फ्यूचर से जुड़ी हुई है कि आप किस तरीके का कोर्स कर सकते हैं, किस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, वो जो चीजें हैं वो हमारे सेगमेंट में शामिल की जाती है ताकि जो युवा साथी हैं उनको जो आगे बढ़ने का मौका है वो मिले और वो सीख पाएं कि किस तरीके से वो आगे फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जी दोस्तों, खास सेगमेंट में बातें जारी है। फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
2: जी दोस्तों, खास सेगमेंट आपका कल में बातें चल रही है आपसे भविष्य से जुड़ी हुई कि किस तरीके से आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और आपका जो फ्यूचर है वो भी आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। जी दोस्तों, अगर हम बात करें युवाओं के सपनों, करियर और नए अवसरों की, तो उनमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि आज का जो दौर है वो डिजिटल दुनिया का दौर है। मोबाइल गेम्स, कार्टून की फिल्में, या यूं कहें कि जो 3D करेक्टर्स हैं और एनिमेशन वीडियोस, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें बनाने वाले लोग कौन होते हैं और किस तरीके से इसमें काम किया जा सकता है?
3: बिल्कुल डिंपल, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर की जो क्रिएटिव भी है, टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा है और फ्यूचर में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाला भी है, यानी एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री में करियर जो है वो हम कैसे बना सकते हैं।
2: जी बिल्कुल दोस्तों, जब हम बहुत से कार्टून देखते हैं और बड़ी बड़ी एनिमेशन मूवीज देखते हैं या फिर मोबाइल में बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो इनके पीछे हजारों लोगों की मेहनत होती है। खेलते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम तो बस इस पे अपना जो टाइम है वो निकाल रहे हैं, इसको गेम खेलते हुए एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों की मेहनत उसके पीछे लगी होती है उसका हमें नहीं पता होता। और अगर हम बात करें एनिमेशन की, तो दोस्तों एनिमेशन का मतलब है चित्रों या करेक्टर्स को इस तरह बनाना कि चलते फिरते वो जीवित लगे। और वहीं गेमिंग इंडस्ट्री में जो गेम्स हैं उनको इस तरीके से डिजाइन करना, कोडिंग करना, ग्राफिक्स, साउंड और जो स्टोरी टेलिंग्स जो है वो सारी चीजें शामिल होती है कि कार्टून्स हम देखते हैं तो वो हमें बोलते हुए, चलते फिरते हुए, एक्टिविटीज करते हुए दिखते हैं, तो वो सब जो है वो किस तरीके से काम करते हैं वो एनिमेशन होता है। यानी अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है और ड्राइंग आपको पसंद है, तो कंप्यूटर में रुचि है, साथ ही साथ गेम्स खेलने का भी आपको शौक है, तो ये इंडस्ट्री जो है वो आपके लिए शानदार मौका बन सकती है।
3: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आज जो है वो भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते गेमिंग मार्केट्स में एक बन चुका है। ऑनलाइन गेमिंग हो या फिर सोशल मीडिया में जो भी एनिमेशन है और भी बहुत सारी फिल्में हैं, इनमें सब इन सब की मांग जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, तो इन सारे यूं कहें कि जैसी बहुत सारी डिजिटल स्टूडियो की कंपनियां हैं, तो लगातार नए कलाकारों और नए डिजाइनर्स को मौका भी दे रही है। अब तो छोटे छोटे शहरों के जो युवा हैं वो भी ऑनलाइन सीखकर इस क्षेत्र में जो है अपना नाम कमा रहे हैं। कई लोग जो है वो फ्रीलांसिंग करके घर बैठे अच्छी इनकम भी कर रहे हैं, तो ये यूं कह सकते हैं कि आपको करियर बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो साबित हो सकता है।
2: जी बिल्कुल कोमल, यानी कि हम कहें कि आज का जो विषय है बेहद दिलचस्प और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री में करियर हम किस तरीके से बना सकते हैं। ये दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ कल्पना, तकनीक और रचनात्मकता मिलकर बनाती है एक नया भविष्य। और दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि जो एनिमेशन है उसका मतलब सिर्फ कार्टून बनाना है, लेकिन अगर असल में इसकी बात करें तो कई अलग अलग जो करियर

0: हैं वो करियर के ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करें एनिमेटर के बारे में कि एनिमेटर क्या है, क्या चीजें इसमें होती है। तो जो करेक्टर्स को क्या उनको जो मूवमेंट देता है कि किस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन देता है, चलना दौड़ना सिखाता है, वो सारी जो चीजें हैं वो एनिमेटर बनाता है। एनिमेटर का खास रोल जो है वो इसमें होता है। साथ ही साथ ग्राफिक डिजाइनर जो होता है, पोस्टर जो गेम्स के सोशल मीडिया पर डिजाइन होते हैं, और विजुअल जो है वो तैयार करता है ग्राफिक डिजाइनर, यानी कि ग्राफिक डिजाइनर का ये काम होता है। तो आप एनिमेटर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और साथ ही साथ आप गेम डिजाइनर भी बन सकते हैं। गेम की पूरी कहानी किस तरीके से है, उसका लेवल क्या होगा, उसमें क्या क्या चैलेंजेस डिजाइन करने हैं, ये सारे काम एक गेम डिजाइनर के होते हैं। और फिर हम बात करें 3D आर्टिस्ट की, तो 3D जो करेक्टर्स होते हैं, बिल्डिंग्स, कार्स, वर्चुअल जो वर्ल्ड्स बनाता है, वो सारे काम जो है वो एक 3D आर्टिस्ट जो है वो करता है। साथ ही हम बात करें VFX आर्टिस्ट की, तो जो मूवीज होती हैं और वीडियोज होते हैं उसमें एक्सप्लोजन है, मैजिक है, साथ ही में जो बारिश के जो हम सीन देखते हैं वो है, और बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स जो है वो तैयार करने होते हैं, तो वो सारे काम VFX जो आर्टिस्ट होता है उसके होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें गेम डेवलपर की, जो कोडिंग की मदद से गेम को काम करने के लायक बनाता है, यानी कि गेम डेवलपर जो है वो एक ऐसा कोड तैयार करता है जिससे कि गेम जो है वो उसको हम खेलने लायक जो है वो हमारे पास तैयार होके आता है।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, और जो है आप बहुत से काम इसमें कर सकते हैं। कौन कौन से स्किल्स आपको सीखना जरूरी है, बहुत सारे स्किल्स आपको आने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो नई नई चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और सबसे पहली चीज़ अगर आप एनिमेशन के अंदर और गेमिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप के अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नई सोच और कल्पना शक्ति है वो यहाँ सबसे बड़ी ताकत होती है। इसके अलावा बहुत सी और भी जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए, ड्राइंग, स्केचिंग, कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए, एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपको आना चाहिए, बेसिक कोडिंग जो है, जैसा कि कोमल आपने बताया कि ये जो बातें हैं ये सब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिस आपको करनी है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर काम जो है वो किस आप उस पर कर पाएंगे और आगे जो है वो बढ़ पाएंगे।
1: जी बिल्कुल, और प्रैक्टिस के साथ साथ ये जो इसमें जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो भी आपको आनी चाहिए कि हम प्रैक्टिस करें तो कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे काम में जो है वो

0: की मदद से जो है वो घर बैठे हम सीख भी सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपना करियर जो है वो एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री में जो है वो बनाना है। क्योंकि दोस्तों अब हम बात करें कि पढ़ाई क्या करनी होती है इसके अंदर और कौन से कोर्सेज जो है वो हम कर सकते हैं अगर कोई भी स्टूडेंट है वो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो जो है वो 10th या फिर 12th के बाद जो है एनिमेशन और गेमिंग से जुड़ने के कोर्स जो है वो कर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा जो है वो आप एनिमेशन में डिप्लोमा ले सकते हैं, BSc एनिमेशन कर सकते हैं, गेम डिज़ाइन का जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स आप कर सकते हैं और साथ ही साथ जो मल्टीमीडिया का कोर्स है वो भी आप कर सकते हैं। और हमारे इंडिया में जो है वो बहुत सारे अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिनमें ये सारे कोर्सेज जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों एक बात याद रखिए कि सिर्फ डिग्री ही सब कुछ नहीं होता, आपका जो पोर्टफोलियो है, आपकी स्किल्स हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं।
1: जी, साथ ही साथ कोमल एक और बात है, वो सेगमेंट है आपका कल यानी कि फ्यूचर से जुड़ी हुई बातें रहती है। तो सभी जो मेरे युवा साथी हैं उनको अपने फ्यूचर की चिंता रहती है कि अच्छी कमाई के साथ साथ हम जो हैं वो अपना जो भी रुचि का काम है वो करते रहें। तो बात अगर इसमें हम कमाई की करें तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इसमें भविष्य कैसा होगा, और इसका जवाब ये है कि बहुत शानदार जो है वो फ्यूचर इसमें हो सकता है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया और मोबाइल गेमिंग, इस वजह से इस क्षेत्र में अवसर जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है दोस्तों कि लोग फ्रीलांसिंग करके घर बैठे जो काम है वो कर सकते हैं, और आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक जो मोबाइल हैं वो उसमें गेम्स खेल रहे हैं, और यही कारण है कि गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और बहुत से आप जो ऑनलाइन काम है वो भी कर सकते हैं, गेम कंट्रोल कर सकते हैं, गेम कंट्रोल क्रिएशन जो है वो भी कर सकते हैं, उसमें करियर का बड़ा विकल्प बन चुका है ये। और आज

0: बहुत से जो युवा साथी हैं वो सोशल मीडिया पर और गेमिंग वीडियोस बनाकर भी बहुत अच्छी कमाई जो है वो घर बैठे कमा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये सारी चीजें जब हम अपने करियर का चुनाव करते हैं तो उसमें डिंपल बहुत सारी चुनौतियां जो है वो भी हमारे सामने आती हैं। हर करियर की तरह और इसमें भी चुनौतियां जो है वो आती हैं। एनिमेशन या गेमिंग इंडस्ट्री में अगर हम करियर बनाना चाहते हैं या फिर और किसी इंडस्ट्री में हम करियर बनाना चाहते हैं तो चुनौतियां जो है वो हर काम में आपको मिलेगी। कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, डेडलाइंस होती हैं और लगातार नए ट्रेंड सीखने पड़ते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर पेशन हो, सीखने की इच्छा हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो ये क्षेत्र जो है वो हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है। क्योंकि दोस्तों कई बार लोग कहते हैं कि गेम्स खेलकर क्या होगा, लेकिन आज वही गेमिंग और एनिमेशन करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। तो जरूरी ये नहीं कि आप सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बने, जरूरी यह है कि आप अपने टैलेंट को पहचाने कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है और आप अपने फ्यूचर में क्या कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, और यानी कि कोमल आपका कहना है कि अगर आपके अंदर कल्पना है, कला है और कुछ नया करने का जुनून है तो ये क्षेत्र जो है आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। और दोस्तों हमेशा याद रखिए कि सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए मेहनत और सीखने का साहस आपके अंदर हो, उनको कुछ जो सपने हैं उनको पूरा करने का जज्बा आपके अंदर हो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम चल रहा है वाणी, खास सेगमेंट आपका कल, जिसमें हम करियर से जुड़ी बातें जो है वो आपके साथ कर रहे थे। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये जीवन जीने की कला सिखाती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो शिक्षा का मतलब होता था स्कूल जाना, किताबें पढ़ना, परीक्षा देना और साथ ही साथ अच्छे अंक लाना। लेकिन आज का जो टाइम है वो बदल चुका है। अब जो एजुकेशन है वो सिर्फ कक्षा की चार दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जो है वो और आगे बढ़ चुकी है। आज मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन क्लासेस है, स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल टेक्निक ने जो है वो एजुकेशन का चेहरा जो है वो पूरी तरह से बदल दिया है। आज का स्टूडेंट सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि दुनिया भर की जानकारी से जुड़ा हुआ है।
7: जी बिल्कुल कोमल। और पहले की अगर हम बात करें तो पहले के समय में शिक्षा जो है वो बहुत सीमित साधनों में दी जाती थी। गाँव में एक छोटा सा स्कूल, ब्लैक बोर्ड, चौक और कुछ किताबें, यही शिक्षा का आधार हुआ करता था। और उस समय जो शिक्षक है उनका बहुत सम्मान भी किया जाता था। गुरु और शिष्य का रिश्ता बेहद मजबूत था। बच्चे अनुशासन में रहते थे और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है अच्छे संस्कार देना होता था। लेकिन उस दौर में कई चुनौतियां भी थी। हर बच्चे जो है वहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती थी। गरीबी, दूरी और संसाधनों की कमी के कारण कई बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे समय बदला, कंप्यूटर आए, इंटरनेट आया और शिक्षा में तकनीक का प्रवेश हुआ। आज बच्चा जो है घर बैठे दुनिया के किसी भी विषय को सीख सकता है, कोई भी भाषाएं सीख सकता है। और बात करें अगर कोमल, थोड़े से पीछे अगर हम चले तो कोरोना काल ने तो शिक्षा के स्वरूप को पूरी तरीके से ही बदल दिया। ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स और जो डिजिटल नोट्स हैं वो आम बात बन गए। जिस शिक्षा को हम केवल स्कूल तक सीमित समझते थे, वह शिक्षा जो है अब मोबाइल स्क्रीन पर भी आ गई थी।
6: जी बिल्कुल। और अब बच्चे जो है वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि वीडियो देखकर सीखते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं और नई तकनीक

0: का उपयोग करते हैं, यानी कि डिम्पल जो डिजिटल एजुकेशन है उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसमें सुलभता है, यानी कि हमारे लिए वो आसान बन चुकी है। अब हमें दूर दूर जो है गांव में रहने वाला जो भी स्टूडेंट है वो भी बड़े शहरों की शिक्षकों से जो है वो पढ़ सकता है। और ये भी चीज है कि आज इंटरनेट ने जो है वो ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया है। अगर किसी को संगीत सीखना हो, तो भाषा सीखनी हो, कंप्यूटर या फिर डिजाइनिंग सीखनी हो, तो सब कुछ काम जो है वो हमें ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल मिलता है।
1: जी बिल्कुल कोमल। और आज अगर शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्किल्स जो आधारित एजुकेशन है, यानी कि आपके अंदर कौशल शिक्षा को ज़्यादा महत्व जो है वो होना चाहिए। बच्चे जो हैं, जैसा कि अभी हमने ब्रेक पर जाने से बात की कि एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री में भी चीज़ें सीख रहे हैं, उसी तरीके से कोडिंग, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो नई चीज़ें हैं वो भी साथ साथ सीख रहे हैं। और यही बदलता स्वरूप जो है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है। और अगर अब हम बात करें कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो दोस्तों आज देश में जो नई शिक्षा नीति भी लागू की गई है उसका उद्देश्य यही है कि शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और सरल बनाना। अब बच्चों पर सिर्फ रटने का दबाव नहीं रहता है, उन्हें समझने, सोचने और नई चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर विशेष ध्यान दिया गया है, इससे बच्चे अपनी भाषा में बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। साथ ही साथ अब खेल, कला, संगीत और तकनीकी शिक्षा को भी बराबर महत्व दिया जा रहा है, यानी कि पढ़ाई अब सिर्फ जो है वो किताबों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल डिंपल, लेकिन हर बदलाव के साथ जो वो बहुत सारी चुनौतियां आती है। हमें पीछे भी बात की कि कोई भी काम हो हमारी लाइफ में उसमें चुनौतियां जो है वो उनका सामना हमें करना ही पड़ेगा। जैसे कि डिजिटल शिक्षा के कारण कई बच्चे जो है वो मोबाइल इंटरनेट पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगे हैं, और इससे जो है वो ध्यान भटकना या फिर मानसिक तनाव जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो है हर बच्चे के पास स्मार्टफोन या फिर अच्छा इंटरनेट नहीं होता, तो आज भी कई ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें डिजिटल पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। और एक बड़ी समस्या इसमें ये भी है कि बच्चे जो है वो किताबों से दूर होते जा रहे हैं। ऑनलाइन जानकारी तो मिल ही जाती है, लेकिन गहराई से पढ़ने की आदत जो है वो कम होती जा रही है। यानी कि शिक्षा के जो बदलते स्वरूप में शिक्षक की जो भूमिका है वो भी बदल गई है। पहले जो है वो टीचर केवल पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन अब वे एक मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका भी निभा रहे हैं। आज टीचर जो है वो बच्चों को सिर्फ यूं कहें कि सिलेबस नहीं, बल्कि जीवन कैसे जीना है उसका कौशल जो है वो सिखा रहे हैं। जैसे हम अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे लाएं, हमें कम्युनिकेशन की जो कला है वो किस तरीके से अपनानी चाहिए, टीम वर्क कैसे करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका समाधान किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें जो है वो एक टीचर हमें अभी भी ऑनलाइन सिखा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए लेकिन एक अच्छे शिक्षक की जगह कोई नहीं ले सकता है। साथ ही साथ शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा जो है वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है दोस्तों। और अगर शिक्षा में संस्कार, नैतिकता और संवेदनशीलता हो तो वह अधूरी रह जाती है, कि अगर उसमें ये सब चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। और आज ज़रूरत है कि ऐसी शिक्षा की जो बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाए, उन्हें समाज, पर्यावरण और मानवता के प्रति जागरूक करे, क्योंकि असली शिक्षा वही है जो इंसान को इंसानियत सिखाती है। और अगर हम बात करें कि फ्यूचर की जो एजुकेशन है वो किस तरीके से होगी, तो अब सवाल ये है दोस्तों कि आने वाले समय में शिक्षा किस तरीके की होगी। शायद भविष्य में वर्चुअल जो रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पढ़ाई और भी रोचक हो जाएगी। बच्चे किताबों में इतिहास पढ़ने के बजाय उसे महसूस कर पाएंगे। कल्पना कीजिए कि अगर विज्ञान की क्लास में छात्र जो है अंतरिक्ष को 3D में देख सकें, या इतिहास की कक्षा में पुराने युग का अनुभव कर सकते हैं, तो पढ़ाई कितनी मजेदार हो जाएगी।
0: जी बिल्कुल, लेकिन तकनीक जो है वो कितनी भी बदल जाए डिंपल, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो हमेशा वही रहेगा। आपने जो बातें कही वो बिल्कुल हमारे भविष्य में आने वाली हैं, और ये सही भी है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को देखते हुए, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य है वो हमेशा यही रहेगा कि ज्ञान देना, सोच विकसित करना और साथ ही साथ जीवन को बेहतर बनाना। क्योंकि समय बदल रहा है और शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा है, लेकिन हम जो है वो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना वो हमें सीखना जरूरी होगा, क्योंकि तभी जाकर जो है हम आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को आसानी से अपना सकेंगे। अब जैसे मोबाइल और इंटरनेट को केवल और मनोरंजन का साधन न बनाकर सीखने का माध्यम बनाना चाहिए। नई चीजें सीखते हैं, अपने कौशल को बढ़ाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सीखना कभी भी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए हमेशा जो है वो टेक्नोलॉजी को अपनाना है और अपनी लाइफ में इस तरीके से आगे बढ़ना है कि टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ चले और हमारी शिक्षा में जो है जो बदलाव आ रहे हैं वो अच्छे बदलाव हमारे लिए सही साबित हो और हम उनको अपनाकर जो वो आगे बढ़ते रहें। दोस्तों प्रोग्राम में भी आगे हम यूं ही बढ़ते रहेंगे। फिलहाल आपको लिए चलते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर, आप बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम युववाणी में।

0: जी दोस्तों, खास सेगमेंट आपका कल में बातें चल रही हैं आपके भविष्य से जुड़ी हुई, और जो खास बातें हैं कि युवाओं के सपनों, करियर और जो टेक्नोलॉजी है और बदलती दुनिया है उसमें किस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपनों को जी सकते हैं। तो ज़रूरी है दोस्तों कि आपके सपने क्या हैं, उनमें आप कितनी रुचि रखते हैं, किस तरीके से आप मेहनत करते हैं। और अगर हम बात करें कि आज की दुनिया की, तो आज की दुनिया जो है पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। मोबाइल बैंकिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन, शॉपिंग, सब कुछ जो है इंटरनेट पर आ गया है। लेकिन जितनी तेजी से तकनीक बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से साइबर जो हम कह सकते हैं अपराध है, वो भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों आए दिन हम सुनते हैं कि किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, या किसी कंपनी का जो डेटा है वो चोरी हो गया। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर इन साइबर अपराधियों को रोका किस तरीके से जाए।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इस और इसका जवाब भी है डिंपल की, ये जो साइबर अपराध है, हम जानेंगे कि इसमें क्या होता, ये क्या होता है, और इसमें जो हैकर है वो कौन होते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है, और युवा जो है वो इसमें अपना शानदार करियर कैसे बना सकते हैं। अगर हम आसान भाषा में समझे तो ये जो साइबर हैकिंग होती है, इसका मतलब होता है कि किसी कंप्यूटर, वेबसाइट या नेटवर्क की सुरक्षा को जांचना, लेकिन पूरी तरह जो अनुमति और सही उद्देश्य के साथ, यानी जो काम एक गलत हैकर चोरी छिपे नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, वही काम जो है वो एक साइबर हैकर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कर सकता है। यानी कि इन्हें जो ये बोल सकते हैं व्हाइट हैट हैकर जो है वो भी कह सकते हैं हम। ये कंपनियां संस्थाओं को बताते हैं कि उनके सिस्टम में कहाँ कमजोरी है, ताकि उसे समय रहते ठीक किया जा सके। हैकर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हैकर्स जो है वो भी अलग अलग होते हैं। आमतौर पर हैकर्स को तीन भागों में हम बांट सकते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। अगर व्हाइट हैट हैकर्स की बात करें तो ये कानूनी तरीके से काम करते हैं और सुरक्षा मजबूत बनाते हैं, और साथ ही अगर ब्लैक हैट हैकर की बात करें तो ये गलत उद्देश्य से हैकिंग करते हैं, जैसे डेटा चोरी करना, अकाउंट हैक करना या फिर वायरस फैलाना। और ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, ये दोनों के बीच होते हैं, कभी अच्छे उद्देश्य से भी तो कभी नियमों को तोड़कर ये दोनों काम करते हैं।
0: जी बिल्कुल कोमल, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एथिकल हैकिंग है वो समाज और तकनीक दोनों के लिए बहुत जरूरी बन चुका है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एथिकल हैकर्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, और एथिकल हैकिंग जो है दोस्तों वो क्या होती है। अगर हम बात करें कि एथिकल हैकिंग जो है वो किस तरीके से एथिकल हैकर्स का काम होता है, तो दोस्तों एथिकल हैकर जो है वो कई तरह के काम करते हैं। वेबसाइट की सुरक्षा जांचना, मोबाइल ऐप की कमजोरी को ढूंढना, कंपनी के नेटवर्क को टेस्ट करना और साइबर अटैक से बचाने के तरीके बताना, डेटा सुरक्षा बढ़ाना, पासवर्ड सिस्टम को मजबूत बनाना, यानी कि इंटरनेट की दुनिया के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो कि एथिकल हैकिंग की जरूरत है वो पूरा करते हैं। और एथिकल हैकिंग की जरूरत क्यों बढ़ रही है इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों आज जो है हर चीज ऑनलाइन है, बैंकिंग से लेकर जो हमारे गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहां से लेकर इंटरनेट पर ये सारी चीजें मौजूद है। ऐसे में साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी हो गई है। सोचिए अगर किसी अस्पताल का डेटा चोरी हो जाए, या बैंकिंग का सिस्टम है वो बंद हो जाए, या किसी स्टूडेंट का ऑनलाइन अकाउंट हैक हो जाए, तो कितना बड़ा नुकसान है वो हो सकता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है एथिकल हैकर्स को नौकरी पर रखती है ताकि उनके सिस्टम सुरक्षित रहें। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों कि एक एथिकल हैकर बनकर भी आप एक अच्छा फ्यूचर जो है वो बना सकते हैं, अपना करियर जो है वो उसके अंदर आप बना सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, यानी कि एथिकल हैकर आपको बनना है तो आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में जो आपकी रुचि है वो होना बहुत जरूरी है। एथिकल हैकर जो है वो आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन बन सकता है अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो, आपकी रुचि अगर इसके अंदर हो, क्योंकि आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बहुत ही मांग बढ़ रही है। सरकारी विभाग हो या फिर बैंक हो या बहुत सारी कंपनियां हो, ई कॉमर्स कंपनियां हो, सभी को जो है वो एथिकल हैकर्स की जरूरत होती है। इस क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां भी मिलती हैं और इस फील्ड में कई तरह के करियर ऑप्शंस जो है वो भी मौजूद होते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और बहुत सारे ऐसे यूं कहें कि सिक्योरिटी कंसल्ट जो होता है वो भी इसमें होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर।

0: ऑफिसर है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर है, तो बहुत सारे करियर ऑप्शन जो है वो इसमें आपको मिल सकते हैं। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसमें सैलरी भी आपको बहुत ही अच्छी मिलती है, क्योंकि आप काम भी जो है वो पूरा इसमें दिमाग लगाने वाला काम होता है, और अनुभव बढ़ने के साथ साथ जो है वो आपकी आय भी तेजी से बढ़ती जाती है। एथिकल हैकर जो है वो बनने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो भी आपको इसमें सीखनी होती है।
1: जी बिल्कुल कोमल। और अब हम बात करते हैं कि एथिकल हैकर्स बनने के लिए क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले कंप्यूटर और इंटरनेट की जो बेसिक जानकारी होती है वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद आपको सीखना होगा नेटवर्किंग जो है वो आना चाहिए, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब सिक्योरिटी, पासवर्ड सिक्योरिटी, डिजिटल सेफ्टी जो है ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। और इसके अलावा कई ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं और सर्टिफिकेट हैं वो भी अवेलेबल हैं जो युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है दोस्तों, हमेशा जो मेरे युवा साथी हैं वो ये ध्यान रखें कि इंटरनेट का सही उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी किसी का अकाउंट हैक करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। बिना अनुमति किसी सिस्टम में प्रवेश करना अपराध है। तकनीक का उपयोग हमेशा जो है सीखने, सुरक्षा और समाज की भलाई के लिए ही होना चाहिए। एक एथिकल हैकर का वही होता है जो अपने ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करे, ऑनलाइन सुरक्षित रहने के जो आसान टिप्स हैं वो भी अपनाए। और बस यही कहना है दोस्तों मेरा आपसे कि आप अगर आप साइबर सुरक्षा टिप्स जो है उन पर काम करते हैं, उनको जान लेते हैं, तो बहुत सारी जो साइबर क्राइम्स हैं उनसे आप बच सकते हैं। सबसे पहले मजबूत पासवर्ड रखें, ओटीपी किसी से शेयर ना करें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी कम शेयर करें, मोबाइल और लैपटॉप को अपडेट रखें। और ये दोस्तों ये एक ऐसा तंत्र है जहां ऐसा एक क्षेत्र है जहां ज्ञान, जिम्मेदारी और तकनीक मिलकर समाज को सुरक्षित बनाते हैं। अगर युवाओं में सीखने का जुनून हो तो यह क्षेत्र जो है उनके लिए सुनहरा भविष्य साबित हो सकता है।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जी दोस्तों, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपके आपका जो है वो आने वाला कल आज से भी बेहतर, उज्जवल और सफल होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, याद रखिए कि सपने वही सच होते हैं जिनके लिए मेहनत और हौसला जो है दोनों साथ चलते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल कार्यक्रम से जाने की इजाजत दें आपकी दोस्त डिम्पल शर्मा को,
1: कोमल दहिया को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। आप सुनिए कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी।

शाम 4:10 पर सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीत। सात बजे आप सुनेंगे अमेरिका केंद्र से कार्यक्रम किसान वाणी। चर्चाएं होंगी किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रामीण महिलाओं का कृषि में योगदान, साथ ही एक भेंट वार्ता होगी बैंकों द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं विषय पर। पारस सरावगी से अमित कुमार की बातचीत।

हमारे केंद्र से सुनिए शाम 7:30 और रात 10:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम। रात 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 साल एक गौरवशाली यात्रा, विषय पर डॉक्टर मंजू शर्मा से भेंट वार्ता। रात्रि 8:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। श्रोतों के ईमेल्स पर आधारित फिल्मी संगीत का कार्यक्रम मन भावन आप सुनेंगे रात 9:15 पर। आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपने ईमेल भेजकर manbhavanchuru@gmail.com पर आप अपने ईमेल हमें भेज सकते हैं। रात्रि 10:00 सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत।

कल की पहले सभा में 6:10 पर चिंतन कार्यक्रम में सुनिए, सफलताएं भी देती हैं सीखने के अवसर। 6:15 पर वंदना। 6:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

सुबह 7:20 पर श्री रामचरित मानस कांड का अध्याय 388। कंपेयर्ड कार्यक्रम नमस्कार चुरू आपके लिए होगा सुबह 7:30 से। चर्चाएं होंगी स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य का होना जरूरी, ई वाहन आज की आवश्यकता, जानकारी दी जाएगी 70 वर्ष से अधिक आयुष्मान कार्ड। सोच संगम कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। 9:10 पर देश गान, 9:15 पर साहित्य सुगंध कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे कविता पाठ संतोष कुमार पारिक से। 9:30 पर सुनिए चित्र संसार, एक ही फिल्म पर आधारित ये कार्यक्रम। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10 से। 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दोपहर 12 सुनिए उमंग NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 12:30 पर आप सुनेंगे माटी के स्वर कार्यक्रम में ईश्वर सिंह जांगिड़ और साथियों से कुछ लोक रचनाएं। 1:05 पर ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घरांगन का प्रसारण होगा। चर्चाएं होंगी कम बजट में गृह प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करें। 2:30 पर सुनिए इंस्टेंट फरमाइश कार्यक्रम, सोशल मीडिया कमेंट्स पर आधारित ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनते हैं। आपको एक बार फिर बता दें, रात 9:15 पर श्रोता सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम मन भवन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है।

0: बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। IPL क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today informed that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner, along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav, and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from the Red Fort last year, had announced about the high-level committee on demographic change. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remain crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country. He said strict legal action should be taken against those involved. Mr. Shah stressed that since drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. Dr. Jaishankar emphasized that Indo-Pacific region must remain a driver for global growth and stability. He said that as maritime democracy

0: मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा करम ने कहा।
1: बॉर्डर फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ ही फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: वार्तावाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण नवदिल्ल्यां क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायाः अध्यक्षता कृता। क्वाड समूहेन स्थिर सुरक्षित ऊर्जा स्वीकरणाय प्रतिबद्धता प्रकटिता। भारत अमेरिका देशौ अद्य महत्वपूर्णानां खनिजानां दुर्लभानां भूतत्वानां च आपूर्तिं खननं प्रतिक्रियां च सुरक्षितं कर्तुं प्रमुख द्वैपाक्षिक संरचनायां हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः राजस्थानस्य सांचो सीमा स्थाने गतवान। राज्यस्य सीमक्षेत्रेषु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 इत्यस्य आरम्भम् अकरोत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाः प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर 1 क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं धर्मशालायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां क्वाड विदेशमंत्रिणां सभायाः अध्यक्षः अभवत्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेशमंत्री बेनी वोंगः, जापान देशस्य विदेशमंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो च अस्यां सभायां भागं भजितवन्तः। सभायाः अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनम् अभिसंबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः क्वाड राष्ट्रेषु सहयोगं सुदृढीकरणाय परस्परं साहाय्यं कर्तुं च अवधानं प्रदत्तवान्। सः अवदत् यत् क्वाड देशाः मुक्त समाजाः सन्ति, ये समृद्धेः विकासस्य च अन्वेषणे नवान्वेषणे च सृजनात्मकतां पोषयन्ति।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकरः अवधानं प्रदत्तवान् यत् भारत प्रशांत प्रदेशः वैश्विकवृद्धेः स्थिरतायाः च चालकः भवेत्। सः अवदत् यत् समुद्रीय लोकतन्त्ररूपेण बहुवादी समाजरूपेण आपण अर्थव्यवस्थारूपेण च क्वाड राष्ट्राः स्वतन्त्रं मुक्तञ्च हिन्द प्रशांत प्रदेशं प्रति दायित्वं वहन्ति। स्वस्य वक्तव्ये अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अकथयत् यत् संयुक्तराज्यम् अस्य वर्षस्य अन्ते क्वाड सहभागिभ्यः ईंधन सुरक्षा मञ्चस्य कृते आतिथेयत्वं करिष्यति, येन अस्य विस्तारः अधिकं भवेत्। क्वाड देशाः दृढमूल्यानि सम्बद्धहितानि च धारयन्ति इति कथयित्वा सचिवः रूबियो अवदत् यत् क्वाड सहभागितायाः कृते अमेरिका देशः गभीरतया प्रतिबद्धः अस्ति। जापान देशस्य विदेशमंत्री तोशिमित्सु मोटेगी इत्येषः स्वस्य संयुक्त वक्तव्ये हॉर्मुज जलसंधौ स्वतंत्रं सुरक्षितं च नौ परिवहनं सुनिश्चेतुं तथा पश्चिम एशिया देशे स्थिरतां आनेतुं कूटनीतिक प्रयासानां महत्वं प्रतिपादितवान्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्री पेनी वोंगः अवदत् यत् क्वाड इत्यनेन क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप इत्यस्य माध्यमेन क्वाडतः प्रशांत प्रदेशं प्रति अद्य पर्यन्तं प्रबलं प्रतिबद्धतां घोषितमस्ति। क्वाड देशाः अपि विधि प्रशासनस्य सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाः च रक्षणार्थं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तः। क्वाड विदेश मंत्रिणां सभया संयुक्त वक्तव्ये उक्तं यत् क्वाड देशाः पश्चिम एशियायाः स्थित्यां चर्चयन् अस्मिन् क्षेत्रे वर्तमानस्य कूटनीतिक प्रयासानां समर्थनम् अपि च चिरस्थायि शान्तेः आशां च पुनः दृढीकृतवन्तः। नौपरिवहन अधिकारिणां स्वतन्त्रतायाः विषये संयुक्त राष्ट्रसंघस्य समुद्र विधि सम्मेलनस्य अनक्लोस इत्यस्य प्रतिबिम्बता अन्ताराष्ट्रिय विधि पालनस्य महत्वं होर्मुज जलसन्धिं तथा रक्तसमुद्रस्य माध्यमेन वैश्विक वाणिज्यस्य सुरक्षायाः अविराम प्रवाहस्य च महत्वं ते पुनरुद्घाटितवन्तः। भारत प्रशांत ऊर्जा सुरक्षायाः विषये स्वस्य वक्तव्ये भारतम् ऑस्ट्रेलिया जापान संयुक्त राज्य अमेरिका च सुसाक्रियमानं स्थिरं पारदर्शिकं सुरक्षितं स्थितिस्थापकत्वं च ऊर्जा आपणं सुनिश्चेतुं दृढ प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत अमेरिका देशौ अद्य महत्वपूर्णानां खनिजानां दुर्लभानां भूतत्वानां च आपूर्तिं खननं प्रक्रियां च सुरक्षितं कर्तुं प्रमुख द्वैपाक्षिक संरचनायां हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य अमेरिका देशस्य विदेश सचिवस्य मार्को रूबियो इत्यस्य च मध्ये दिल्ली नगरे ऐतिहासिक समन्वयस्य आदान प्रदानम् अभवत्। विदेशमन्त्रिणा उक्तं यत् इयं संरचना स्थितिस्थापकान् विविधाः च आपूर्तिशृङ्खलाः सुदृढां करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य समये सीमा सुरक्षाबलस्य भूमिकायाः प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अनेन सैन्यबलेन न केवलं सीमायाः रक्षणं कृतम् अपि तु सीमवर्ती जनपदेषु निवसतां जनानां मनोबलम् अपि वर्धितम्। सीमा सुरक्षां पूर्णतया सुदृढां कर्तुं सीमा सुरक्षाबलेन प्रशासनं नागरिकान् च संयोज्य चतुस्तरीय ग्रिड इत्यस्य निर्माणाय श्रीशाहेन विशेषम् अवधानं प्रदत्तम्। श्रीशाहः अवदत् यत् अद्य बीकानेर नगरस्य समीपे सीमा सुरक्षाबलस्य सांचू पोस्ट इत्यत्र आयोजिते प्रहरी सम्मेलने सम्बोधयन् आसीत्। सः अवदत् यत् अस्याः चतुस्तरीय ग्रिड व्यवस्थायाः साहाय्येन सीमायाम् उद्भूतानां विभीषिकानां पूर्णशक्त्या प्रतिकारः भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां गंगटोक नगरं सम्प्राप्तवती। स्वकीया यात्रावधौ राष्ट्रपतिः महिलानां कृते समर्पितं पिंक बस यानानां उद्घाटनं करिष्यति, यस्योद्देश्यं राज्ये सुरक्षितं सुलभं परिवहन सौकर्यं इत्यस्य परिष्कारः भवेत्। सा सिक्किम राज्यस्य समृद्धिं पारिस्थितिकं पुष्प परम्परां च द्रष्टुं रिड्ज पार्क इत्यस्य आर्केडियम अपि गमिष्यति। पश्चात् दिने सा नामग्याल इंस्टिट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी इत्यत्र गमिष्यति, यत् दुर्लभाः पाण्डुलिपीनां बौद्ध सांस्कृतिक कलाकृतीनां च संरक्षणाय प्रसिद्धः अस्ति। भारतं समेत्य समग्र विश्वात् कोटिशः जनाः अद्य साउदी अरेबिया देशे हज यात्रां कुर्वन्तः सन्ति। ह्यः पञ्चदिवसीय वार्षिक तीर्थयात्रायाः आरम्भः लक्षशः हज तीर्थयात्रिणः मीनानगरे रात्रिं व्यतीतवन्तः। अधुना ते अराफात क्षेत्रे मुख्य हज अनुष्ठानार्थं प्रार्थनार्थं च समागच्छन्ति। ते तत्र पूर्णदिनं यापयन्ति, प्रार्थयन्ति च। तीर्थयात्रिणः निमरा मस्जिद इत्यत्र खुत्बाय हज अर्थात हज प्रवचनं श्रुतवन्तः। ततः सायंकाले ते मुजदलीफा नगरं प्रति प्रस्थानात् प्राक् अपराह्ने सायंकाले च संयुक्तरूपेण प्रार्थनां कुर्वन्ति। भारत ऋतुविभागेन अद्य दिल्ल्याम् उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्याम् उष्णतरङ्गस्य स्थितिः श्वः पर्यन्तं यथावदेव भविष्यति इत्यपेक्षते, यत्र अधिकतमं तापमानं 44-46 डिग्री सेल्सियस परिमितं यावत् भविष्यति। अद्य हरियाणायां चंडीगढ़े पूर्वी मध्यप्रदेशे पंजाबे उत्तरप्रदेशे विदर्भे तथा पश्चिम राजस्थान राज्ये च तीव्र उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमितम्। अत्रांतरे अद्य श्वः दक्षिण पश्चिम प्रावृट कालः केरल राज्यं प्राप्स्यति इत्यपेक्षते। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर 1 क्रीडायाम् गुजरात टाइटन्स दलं गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं धर्मशालायां सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों के लिए भर्ती कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर रात का पारा भी 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलाकर चतुष्कोणीय ग्रिड तैयार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी खतरे से निपटने की संयुक्त जिम्मेदारी इन सभी की होनी चाहिए। श्री शाह आज बीकानेर के पास बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चतुष्कोणीय ग्रिड के माध्यम से ही सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकता है।
4: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़ेगा और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ की सरकार का स्थानीय प्रशासन, ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
3: गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए सीमा पर स्थित गांव के लोगों को भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 महीने में कर दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि राजस्थान में 1,096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनने से न केवल बीएसएफ की विधाएं बढ़ेंगी बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। उन्होंने सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र के नागरिकों और युवाओं से लगातार संवाद कर उन्हें सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश के सुरक्षा तंत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है।
4: सेना को आधुनिकीकरण हो रहा है।

0: भारत सरकार ने अपनाई।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा पर तैनात जवानों का उत्साह वर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण भी किया। गृह मंत्री ने बीकानेर में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्रालय और BSF के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण अगले वर्ष अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां से उड़ानें संचालित हो सकेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर आज नई दिल्ली में हुई बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को कोटा एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बिरला ने पुराने एयरपोर्ट के स्थान पर एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। इस बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कोटा के संभागीय आयुक्त, कोटा बूंदी के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। गौरतलब है कि 1088 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। एयरपोर्ट का रनवे लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा। इस रनवे पर दुनिया के बड़े एयरक्राफ्ट भी आसानी से उतर सकेंगे। एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 20 लाख यात्रियों की होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रदेश की 3 विभूतियों को बधाई दी है। श्री बागड़े ने कहा कि इन हस्तियों के सम्मान से पूरा राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66 विभूतियों को देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया। इनमें प्रदेश की 3 हस्तियां, सामाजिक सेवा और लोक कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने के लिए स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, लोकवाद्य भपंग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा के सुगम संचालन के लिए विभिन्न विषयों की परीक्षाओं को 4 ग्रुप में विभाजित किया है। विषयों और परीक्षाओं की तिथि की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 10 विषयों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। प्रदेश में किसानों को नकली और अमानक बीजों से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से आज बीकानेर, सीकर, जोधपुर और जयपुर में व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और अन्य अधिकारियों ने अलग अलग जगह नकली बीज बनाने वाली 14 फैक्ट्रियों में छापेमारी की। चौमू स्थित एक बीज कंपनी में छापेमारी के दौरान श्री मीणा ने दावा किया कि कंपनी में गुणवत्ताहीन मूंगफली के बीज की पैकिंग की जा रही थी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी बुवाई सत्र के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने

0: बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जयपुर जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, साथ ही परामर्श और आवश्यक रेफरल सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस बीच आज महिलाओं और बालिकाओं में एनीमिया की दर कम करने के लिए शक्ति दिवस आयोजित किया गया। हर मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस के दौरान अस्पतालों में बालिकाओं और महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, साथ ही एनीमिया के उपचार के लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन क्षेत्रों के कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रात में भी पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। फलोदी और बीकानेर में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बीती रात कोटा, बीकानेर, संगरिया, करौली और दौसा में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। झुलसाने वाली गर्मी और तेज धूप के कारण दिन के समय सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित रही। चूरू में भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाड़मेर और जैसलमेर में भी लगातार जारी लू से लोग बेहाल हैं। भीषण गर्मी और लू से बचाव के प्रबंधों को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जिला अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को उन्होंने बताया कि अधिकारियों को बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा, पानी की आपूर्ति सुचारू हो। और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
0: मौसम केंद्र जयपुर ने कल भी तेज गर्मी और गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं 28 मई से प्रदेश के कुछ भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 52 जोड़ी रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के 132 अतिरिक्त डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये बढ़ोतरी जून माह के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे यात्रियों को प्रतीक्षा सूची की समस्या से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जितेंद्र शर्मा ने तैयार किया है। श्रीगंगानगर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। हीट वेव के हालात और अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गर्मी से राहत के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नगर परिषद के अलावा लोग खुद के स्तर पर भी छिड़काव कर रहे हैं। वहीं भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर पीने के ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। गंगा दशमी के मौके पर जिले में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। जिला स्तरीय कार्यक्रम शिवपुर हेड पर रखा गया। जिला कलेक्टर अमित यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण और पानी की बचत के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां रखी जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छता, श्रमदान, जल संरक्षण शपथ और पौधरोपण भी किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसानों से सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग की अपील की गई। साथ ही उन्हें डिग्गी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिले में पारंपरिक कुओं, बावड़ियों और तालाबों की भी अभियान के तहत साफ सफाई की जाएगी। वहीं विभिन्न औद्योगिक समूहों, भामाशाहों और नागरिकों को अभियान से जोड़ा जाएगा। जल संकट से निपटने के लिए इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ये प्रयास जल आत्मनिर्भरता और हरित राजस्थान बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। प्रदेश के सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक पिछले दिनों सूरतगढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने गंगानगर के लिए सहकारी बैंक की रजियासर शाखा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के बीमा सहायता राशि के चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में श्री दक ने सहकार से समृद्धि योजना के नवाचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीगंगानगर में ACB ने घड़साना थाने के SI रामेश्वर लाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने ये रकम परिवादी से पिछले साल दर्ज एक मुकदमे में कार्रवाई नहीं करने की एवज में मांगी थी। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में अब तक 3,000 से ज्यादा पात्र किशोरियों को ये टीका मुफ्त लगाया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने अभिभावकों से 14 वर्ष की बालिकाओं को ये टीका लगवाने का आग्रह किया है। आशा सहयोगिनियां और ANM भी घर घर जाकर लोगों को इस टीके के बारे में जागरूक कर रही है। श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार का भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही जिले में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों की ओर से मानव के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद सहारा ने उनकी इस शानदार उपलब्धि को जिले के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मानव को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले कोच धीरज शर्मा ने भी उनकी इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रांची में आयोजित सीनियर नेशनल फेडरेशन कप में जिले के रावला क्षेत्र की एथलीट कुलविंदर कौर ने हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कुलविंदर ने 57 मीटर 76 सेंटीमीटर दूर हैमर फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की। पुलिस ने श्रीगंगानगर में ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 अवैध हथियार और भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने समीजा कोठी इलाके में ये कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि मामले में तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल अभियान के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी के तहत दौलतपुरा से क्यू हेड सीमा चौकी तक साइकिल रैली निकाली गई। BSF के जवानों और अधिकारियों के साथ इस रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया। क्यू हेड पोस्ट पर रैली के समापन पर योग सत्र रखा गया। इसमें प्रतिभागियों को योगाभ्यास करवाया गया। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजेय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता कानियों मिलर काम करण माथे जोर तीनो। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा आवता साल दिसंबर उड़ाना शुरू फैला। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी कीनो। और प्रदेश का कई हल्का माए लू रो कोप कई थोड़ा रात्रि बगती पारो 32 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजेय बनावट सारू बीएसएफ फौज प्रशासन हर जनता ने मिलार ग्रिड बनावनो घणो जरूरी है। श्री शाह आज बीकानेर कने बीएसएफ री सांचू पोस्ट माथे राखी जा प्रहरी सम्मेलन माई बोल रहा हा। वे कहो के ई ग्रिड रे जरिए सरहद माथे रा खतरा रो पूरी ताकतु मुकाबलो करियो जा सके है।
1: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ सेना और जागरूक नागरिक ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ की सरकार का स्थानीय प्रशासन ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
0: श्री शाह सरहदी हलका ना विकास सारू चलाया जा रहा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम रो जिक्र करता था का कहो का इरे जरिए सरहद माथा बसियोड़ा गांव रा लोका नई केंद्र और राज्य सरकार री जनता रा भलारी योजनावा रो फायदो मिल सकेला। वे कहो का सरहदी हलका माए ड्रोन न खत्म करण री मशीना बनावन रो कारखानो लगावन रो काम 6 महीना माए शुरू करतियो चावेला। गृह मंत्री कहो के प्रदेश में 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनवाऊं बीएसएफ रो सुबितो बधवा सके सरहदी हलका रो जुड़ाव भी मजबूत बनेला। गृह मंत्री सरहदों 50 किलोमीटर अंदर ताई रा हलका री जनता और नौजवानों लगातार बातचीत कर और वहां माए सरहद री हिफाजत उन जुड़िया मुद्दा ने बारा माए जाग जगावन ने जरूरी बतायो। श्री शाह कहो के साल 2014 पाछे फौज और अर्ध सैनिक बलों ने और मजबूत बनावन सागे आतंकवाद रे खिलाफ करोड़ों रुख अपनाई चियो है।
1: सेना को आधुनिकरण हो रहा है हमारी

0: की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
1: એનો પહેલી ગૃહમંત્રી સરહદ માથે તૈનાત જવાનારો ઉમાવ બધાતા થકા દેશ રી હિફાઝત માં વારા યોગદાન રી સરાહના કીની એ મોકે વે સરહદ માથે બની ચોકિયા માં મહિલાઓ સારું નુવી બનાઈ જી 14 બેરકા ને ઇલેક્ટ્રોનિક તરીકા જનતા ને સોંપી ગૃહમંત્રી બીકાનેર માં મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા સાગે પ્રશાસન અર પોલીસ રા આલા અહેલકારા હોઈ વાતચીત કીની। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डो बनावन रो काम आवता साल अक्टूबर महीना ताई पूरो कर लियो जावेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री सदारत माए आज नई दिल्ली माईफी मीटिंग माए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रा अहलकार आ जानकारी दीनी। ये पाछे वठे जहाज उड़ान भरन लागेला। हवाई अड्डाऊ दिसंबर 2027 ताई नियमित हवाई सेवा शुरू है जावेला। लोकसभा अध्यक्ष जूना हवाई अड्डा रिठौर एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलन रा बारा माए विचार करण सारुई कहो। ध्यान जोग है कि 1088 एकड़ हल्का माए बन रहा ई ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा रो रनवे 3.2 किलोमीटर लंबो फैला। ई हवाई अड्डा हर साल 20 लाख मुसाफिर उड़ान भर सकेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े पद्मश्री नवाजी जी प्रदेश री तीन विभूतियां ने बधाई दीनी है। श्री बागड़े कहो के आ हस्तियां रा मानो राजस्थान रो माथो ऊंचो फियो है। ध्यान जोग है के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल 66 विभूतियां ने राष्ट्रपति भवन माए पद्म अलंकाराओं नवाजी ही जहाँ माए राज्य रा समाज सेवी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज भपंग ने दुनिया माए ओलखाण दिरावन वाला गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजारी मीठी धुन दुनिया भर माए पुगावन वाला तगाराम भील रो पद्मश्री पुरस्कार देर मान करी चियो हो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC माध्यमिक शिक्षा विभाग माए 10 विषया माए वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती रो कार्यक्रम जारी करती नो है। बोर्ड रा सचिव बतायो का इम्तिहान 12-18 जुलाई ताई लियो चावेला। न्यारा न्यारा विषया री परीक्षावां ने 4 ग्रुप माए बांटी जी है। प्रदेश में किसानों ने नकली और अमानक बीजों बचावन सारू कृषि विभाग बीकानेर सीकर जोधपुर और जयपुर में आज खास अभियान चलायो। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अहलकारन सागे मिलर कथित नकली बीज बनावन रा 14 कारखाना माथे छापा मारिया। कृषि मंत्री चोमूरी एक बीज कंपनी में छापेमारी रे दौरान कंपनी में घटिया मूंगफली रा बीज री पैकिंग रो दावो कीनो। डॉक्टर मीणा कहो के सरकार आवता बुआई सत्र सारू किसाना ने बेहतर गुणवत्ता वाला प्रामाणिक बीज मुहैया करावनो ते कीनो है। तंबाकू रा गलत नतीजा ना बारा माए जनता माए जाग जगावन रा मकसद जयपुर जिला माए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओर खास अभियान चलायो जा रियो है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत बतायो के अभियान रे जरिए लोगों ने तंबाकू छोड़ बारी सीख देवन सागे इनु जुड़ी राय और जरूरी सेवावां मुहैया कराई जावेला। 31 मई ने मनाया जावन वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस रे मौके सगला आयुष्मान आरोग्य मिंद्रा माए खास कार्यक्रम रख्या जावेला। ई बीच महिलावां और टाबरिया माए खून री कमी री परेशानी कम करण सारू आज शक्ति दिवस मनाई चियो। इस दौरान अस्पताल माए महिलाओं रा शरीर माए खून री जांच सागे इनरी कमी रो इलाज करी चियो और आयरन री गोलियां दी री ची। अरब मौसम प्रदेश माए न्यारी न्यारी छोड़ा लू बाजनो जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो है। राज्य रा आतुणी उत्तराद और उगनी जिला माए आज ही पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस या इनो ऊंचो दर्ज करी चियो। श्री गंगानगर माए 47 जबकि फलौदी और बीकानेर माए 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। रात्रि भगत ही तापमान सामान्य ऊंचो चाल रियो है। बीती रात कोटा बीकानेर सांगरिया करौली और दौसा माए रात रो तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। चूरू माए पड़ रही जोरदार गर्मियों लोगों ने घनी परेशानी रो सामो करनू पड़ रियो है। बाड़मेर और जैसलमेर माए लगातार बाज रही लू हाल बेहाल है। इबीचे भयंकर गर्मी और लू बचाव रा प्रबंध रो जायजो लेवन सारू गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज डीग माय अहलकारा सागे मीटिंग कीनी ई पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कम वे कहयो के अहलकारा ने बिजली पानी री पूर्ति बनाई राखन रा हुकम दिया चिया है
2: जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो इसके लिए विभाग पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूं कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा पानी की आपूर्ति सुचारू हो और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
1: मौसम केंद्र जयपुर काली मौसम सूखो रेवन सागे उन्नो बायरो बाचन रा आसार चताया है। इन बीच 28 मई प्रदेश में कठे कठे आंधी बारिश वेवन री संभावना है। गर्मी री छुट्टियां माए मुसाफिरां रा सुविधा सारू उत्तर पश्चिम रेलवे री 52 जोड़ी गाड़ियां माए 132 और डिब्बा जोड़िया जावेला। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी वे बतायो के आ बढ़ोतरी जून महीना माय करी जावेला। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत आज 15 दिन ताई ऑनलाइन तरीका अर्जी दी जा सके है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत काल पाली माय बतायो हो के ई योजना रा तहत रेल और हवाई जहाज रे जरिए 56,000 बुजुर्गों ने मुफ्त तीर्थ करायो चावेला। आम आयु 50,000 यात्रु रेलगाड़ियों और 6,000 बुजुर्ग हवाई जहाजों सफर करेला। आईपीएल क्रिकेट रा ई सीजन रो पहलो क्वालिफायर मुकाबलो आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस बीच खेलो जावेला। अब थोड़ी देर पछे धर्मशाला माई फेवन वाला ई मुकाबला माए जीतन वाली टीम सीधी आईपीएल 2026 रा फाइनल माई पूग जावेला जदके हारबा वाली टीम ने एक और मौको मिलेला। होर रातेत काल मोहाली माई खेलिया जावन वाला एलिमिनेटर मुकाबला माए राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमी सामी वेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक कर फेर सुन ली रहो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता कानून मिलर काम करण माथे जोर दीनो। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डाऊ आवता साल दिसंबर व्यावसायिक उड़ाना शुरू है जावेला। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी कीनो। हर प्रदेश रा कई हलका माए लू रो कोप श्री गंगानगर माए 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
3: एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी चुरू से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है।

0: परंपरागत खेती।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनना रा सगले किसान भाई बहना ने बवरी और
2: गंगा रा मोकला मोकला
1: राम राम।
2: तो बवरी बहन आप गया चौपाल और देखो के जो गर्मी है बहुत ज्यादा है। किसान भाई जो कहीं बे खेतों की तैयारी क्यों कहीं टाइम अपने क्या कर जितनु तपे तावड़ियों तपे गो जमीन तपेगी बितनु ही बिरखा भी अच्छी हुए और नाज भी अच्छी हुए। पर देखो ए टाइम में जो बहुत सारा किसान जो कहीं के आगे की खेतों की तैयारी है कि कौन सी फसल ब्यावांगा किनू व्यवस्था करावा फीस टके की व्यवस्था की भी बात हुए और सुविधाओं की बात हुए तो ए के खातिर आप एक विशेष भेंटवार तज किया किसान भाई के लिए लेके आया हाँ बैंकों के द्वारा किसानों ने मिलने वाली ऋण और अन्य सुविधाएं विषय के माथे पारस सरावगी वरिष्ठ शाखा प्रबंधक की बातचीत सुना
1: सुनो साहब।
3: नमस्कार किसान भाइयों, आज का युग आर्थिक युग है और जब जब हम इस आर्थिक युग में बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे किसान को भी आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है और किसान तभी मजबूत होगा जब वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा बैंकों से जुड़ेगा एवं जितने भी बैंकों के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं चाहे वो केसीसी हो या ट्रैक्टर के पर लोन हो या एसएचजी के माध्यम से दिया जाने वाला लोन हो उनमें किसानों को जो जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा सब्सिडियां दी जा रही है उसका भी फायदा मिले और भी अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं उनका भी अगर किसान फायदा उठाता है तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी भी बढ़ेगी एवं उसका सशक्तिकरण भी होगा। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तो वरिष्ठ प्रबंधक है श्री पारस सरावगी को आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो सर सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है।
4: धन्यवाद अमित जी।
3: तो सर जब आप बात करते हैं हम क्योंकि यहाँ किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों के लिए जो बैंकों के द्वारा मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाएं कौन कौन से कार्यक्रम है वो संचालित किए जा रहे हैं जिससे किसानों का अपलिफ्टमेंट हो सके।
4: देखिए अमित जी मैं आपको बताना चाहूंगा आज खेती जो है सिर्फ परंपरागत खेती नहीं रह गई है। आज जो है ये खेती एक यांत्रिक और आधुनिक रूप से खेती की जा रही है जिसमें बहुत आधुनिक तरह के औजार यूज होते हैं। उसी के अनुरूप सरकार भी अपनी नई नई योजनाएं ला रही हैं। सरकार की सारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं प्राइवेट बैंकों द्वारा किया जाता है। तो आपकी जो मुख्य जो किसान भाइयों के लिए जो स्कीम्स हैं उसमें मैं बताना चाहूँगा किसान क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं, एसएचजी लोन होता है, ट्रैक्टर लोन होता है, गोल्ड लोन होता है, फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम इसमें एक होती है जिसमें कि आप कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, सोलर आप खेत में सोलर लगाना चाहते हैं उसके लिए हम लोन कर सकते हैं। तो आप सबको इस चीज़ों के लिए जागरूक होना पड़ेगा और आपको बैंक से जुड़ना पड़ेगा तभी आप लोग जो है इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे।
3: जी आपने बताया कि किस प्रकार से जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं वो किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की ऋणों के माध्यम से कार्य कर रही है। एक बड़ा ही कॉमन सा सामान्य शब्द आ रहा है वित्तीय समावेशन, और वित्तीय समावेशन क्या होता है और किस प्रकार से किसान इससे जुड़े और इससे किसानों को क्या फायदा होगा।
4: जी अमित जी मैं बताना चाहूंगा वित्तीय समावेशन का अर्थ यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुँचाना। जो व्यक्ति आज भी बैंकिंग सुविधाओं से दूर है हर व्यक्ति का बैंक में खाता होना चाहिए। आज भी जो सरकार है यूआरसी जिसको बोलते हैं अनबैंक्ड रूरल सेंटर जहां पे बिल्कुल भी बैंक नहीं है 5 किलोमीटर के दायरे में वो गांव सरकार चिन्हित कर रही है और वहां पे बैंक शाखाएं खोलने के प्रावधान कर रही है। तो मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को आपके जो भी नजदीकी जो बैंक हैं वहां पे अपना खाता जरूर खुलवाएं, पूरे केवाईसी दस्तावेज लेके जाएं और अपना पूरा खाता खुलवाएं, अपना आधार बैंक शाखा में लिंक करवाएं, आधार कार्ड अपना अद्यतन रखें, उसमें अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें जिससे कि जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं उनका लाभ आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे।
3: जी आपने बताया था कि किसान भाई अपना खाता अवश्य खोले ताकि वो बैंकों से जुड़े। तो एक सामान्य सा क्वेश्चन है कि किस जो खाता खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आवश्यक है ताकि किसान भाई वो तैयार करे और बैंक पे पहुंचे।
4: जी मैं बताना चाहूँगा खाता खोलने के लिए आपको नॉर्मल केवाईसी सिर्फ आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो जो है वो पर्याप्त है नॉर्मल केवाईसी। और यदि आपके पास पैन कार्ड की उपलब्धता नहीं है तो बैंक आपके पास फॉर्म भरवाएगा उसका वो भी पर्याय अपने पास उपलब्ध है। तो बहुत ही मिनिमम दस्तावेज के साथ आप जिस वर्तमान में जिस पते पर रह रहे हैं उस पते का एक प्रूफ और एक आपकी आईडी वो आप मिनिमम दस्तावेज के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं।
3: जी आपने बताया बड़े सरल शब्दों में कि किस प्रकार से किसान जो भाई है वो अपना खाता है

0: जुड़वा सकते हैं और बैंकों से जुड़ सकते हैं। जब हम बात कर रहे थे सुविधाओं की, तो सबसे जो मुख्य सुविधा जिसका उपभोग है वो किसान भाई करते हैं, वो किसान क्रेडिट कार्ड का। तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए
1: जी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जो किसानों को खेती, पशुपालन और उसे संबद्ध जो भी गतिविधियां हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर आसान ऋण जो है उपलब्ध करवाती है। बात करें इसकी ब्याज दरों की, तो आमतौर पर केसीसी की जो ब्याज दर है वो 7% ही होती है और जो समय पर लोन चुकाते हैं उनको सरकार की तरफ से 3% की प्रोत्साहन मिलता है, छूट मिलती है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा जो भी केसीसी किसान भाई ले रहा है, बस इतना ध्यान रखे उसको समय समय पर टाइम से उसको पुनर्भुगतान करता रहे, जिससे क्या है कि उसका नवीनीकरण भी समय पर होता रहेगा। जनरली केसीसी 5 साल के लिए होती है, हर 1 साल के बाद उसका नवीनीकरण होता है और उसके आपकी 10% जो लिमिट जो है वो बढ़ती जाती है। और केसीसी में जो आपको अमाउंट मिलता है वो आपके पास किस प्रकार का खेत है, आपकी जो गिरदावरी है उसमें कौन सी फसल आप बो रहे हो, रबी में फसल में, उन सभी फसलों के हिसाब से नाबार्ड का एक स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर फसल के लिए आपको प्रति हेक्टेयर कितना पैसा मिल सकता है, वह भी सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र के लिए अलग अलग है। तो ये सब चीजें निर्धारित है, आप सिर्फ अपनी जो खसरा है बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं, और अपनी गिरदावरी लेके बैंक में जाइए और आपको जो है निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा।
0: जो अहम जानकारी है वो हमारे लिए फायदेमंद इसलिए भी है कि हमारे कई किसान है कभी कभी है वो आलस के रूप में भी है, जब कहते हैं कि रिन्यूअल करवानी होती है केसीसी तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक कर जाते हैं और उस पर उसकी वजह से जो 7% ब्याज रेट है उन पर लग जाती है। तो सभी किसान भाई अपनी केसीसी का रिन्यूअल है वो समय पर कराएं और हर साल जो 10% जो इंक्रीज होता है उसका भी फायदा मिलता है। और एक और बात जो इन्होंने बताई कि सिंचित और गैर सिंचित क्षेत्र है, कौन सी फसल है, अगर आपकी फसल व्यापारिक है, कॉमर्शियल क्रॉप है, तो उस पर आपको केसीसी अधिक मिलेगा। अगर उसकी तुलना में अगर आप परंपरागत खेती करते हैं तो वहां पर आपको केसीसी का ऋण कम मिलेगा। तो इस तमाम तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी खेती का प्लानिंग करें। अब आप बात करें सर, जब किसान केसीसी बनाता है उसके साथ साथ उसको और भी बहुत सारी जरूरतें होती है। जब आपने एक शुरुआत में बताया था फार्म मैकेनाइजेशन, तो फार्म मैकेनाइजेशन पर बैंकों के द्वारा किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है और किसान किस प्रकार से लाभान्वित हो सकता है?
1: जी, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा। एक केसीसी के बारे में एक बात पहले बताना चाहूंगा कि आपकी जो जमाबंदी है उसको आप ऑनलाइन अद्यतन जरूर करवाएं। पहले क्या होता था कि आप लोग पटवारी से उसको हस्ताक्षरित करके वो बैंक में मान्य होती थी, लेकिन आज की डेट में वो पटवारी से हस्ताक्षरित की हुई जमाबंदी बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप ऑनलाइन जो है उसको अपडेट कराएं, बैंक भी ऑनलाइन उसको वेरीफाई करता है अपना खाता जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, और उसके बाद उसके आगे की प्रक्रिया करता है। तो आपके फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में जैसे मैं बताना चाहूंगा कि आपको कृषि के लिए जो उपकरण आजकल आधुनिक उपकरण जो काम में लिए जाते हैं उनकी खरीदी करने के लिए भी बैंक जो है टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। उसमें आपको करना यह है कि आपका जमाबंदी लानी है, आपका कितने बीघा खेत है, आप कौन सा उपकरण खरीदना चाह रहे हैं, उसका एक कोटेशन आपको बैंक को प्रस्तुत करना है कि भाई हम ये चीजें जो है, हमें सोलर पंप सेट है या आपका कोई स्प्रिंकलर सिस्टम है, आजकल जो भी आधुनिक उपकरण है वो आप कोटेशन लाइए और उसके बेस के ऊपर आपको टर्म लोन बैंक के द्वारा दिया जाएगा, जिसका भुगतान आपको ईएमआई बेसिस पे करना होगा और उसमें भी बैंक के द्वारा सब्सिडी, सरकार के द्वारा उसमें सब्सिडी की व्यवस्था है।
0: जी, आपने बताया कि किस प्रकार से है वो फार्म मैकेनाइजेशन में जो बैंकें हैं वो किसानों की मदद कर रही है। किसानों के पास सबसे बड़ी संपत्ति उसकी जमीन होती है और उसी पर वो खेती करता है। कभी कभार मानसून की बेरुखी की वजह से उसकी फसल है वो नुकसान भी हो जाती है, उसको घाटा भी हो जाता है। तो दूसरा उसके पास क्योंकि हमारे भारत में ये सदा से रहा हुआ है कि सोना है उसको एक अमूल्य संपत्ति के रूप में सब घर पे है वो रखते हैं, तो और किसान है कभी कभार उस सोने का भी यूज करता है। तो एग्री गोल्ड लोन है उसके बारे में बताइए, किस प्रकार से एग्री गोल्ड लोन है वो हमारे किसान भाई भी प्राप्त कर सकते हैं?
1: जी अमित जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। एग्री गोल्ड लोन के बारे में बताना चाहूंगा। गोल्ड लोन जो है वो वैसे तो प्रत्येक क्षेत्र में होता है, लेकिन सरकार जो है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि गोल्ड लोन को अत्यधिक बढ़ावा दे रही है। इसकी वजह से कृषि गोल्ड लोन की जो ब्याज दर है वो काफी न्यूनतम है और उसका प्रति ग्राम जो स्केल ऑफ फाइनेंस है, प्रति ग्राम जो बैंक उसका अमाउंट प्रोवाइड करवा रही है वो काफी अच्छा है। तो आपको सिर्फ सोना लाना है और जमाबंदी की सिर्फ एक कॉपी प्रस्तुत करनी है कि मैं एक लैंड का होल्डर हूँ, मैं एक किसान हूँ, सिर्फ आपको यही प्रस्तुत करना है और बैंक आपको जो है एग्री गोल्ड लोन देगी जो कि एक साल के लिए मिलता है। और यदि आपका लोन का अमाउंट यदि आपको 2.5 लाख से नीचे है तो आप सिर्फ घोषणा पत्र के ऊपर भी आप लोन ले सकते हैं कि मैं किसान की संबंधित गतिविधियों में कार्यरत हूँ, उस पर भी आपको लोन मिल सकता है। दूसरी बात एक मैं और बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि जमाबंदी होती है अपने किसी पारिवारिक सदस्य के नाम पे और लोन अपने को लेना होता है, जैसे पिताजी के नाम पे जमाबंदी है और बेटा चाहता है कि मैं गोल्ड लोन लूँ, तो बिल्कुल ये चीज़ जो

0: संबंधित गतिविधियों में मैं मेरे पारिवारिक सदस्य के साथ कार्यरत हूँ, इसलिए मुझे एग्री गोल्ड लोन दिया जावे, तो वो भी अपने पास उपलब्ध है।
1: जी, आपने बताया कि किस प्रकार से एग्री गोल्ड लोन है वो किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में SHG का बहुत बड़ा रोल होता है और हम जानते हैं कि आधी आबादी है वो हर जगह अपनी भूमिका निभा रही है। किसान और कृषि क्षेत्र में भी जो हम कह सकते हैं महिला किसान है वो भी पूरी तरीके से भूमिका निभाती है। और जब जब देखते हैं कि SHG के रूप जो कोई कुटीर उद्योग है या अन्य प्रकार के उद्योग धंधे जैसे पापड़ बड़ी उद्योग है अपने क्षेत्र में बहुत है या कोई हस्तशिल्प उद्योग है इस प्रकार के वो कार्य भी कर रही है, तो SHG को लोन देने में किस प्रकार से आपकी प्रक्रिया है और किस प्रकार से महिलाएं हैं वो SHG बनाती है और किस कितना लोन आप दे सकते हैं?
0: जी अमित जी, मैं बताना चाहूँगा SHG के बारे में। SHG जो है स्वयं सहायता समूह है, एक छोटा स्वैच्छिक संगठन है जो समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोगों विशेषकर महिलाओं द्वारा स्वेच्छा से बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नियमित बचत के माध्यम से जरूरतों को पूरा करना, उन्हें रोजगार के अवसर देना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें सदस्य की संख्या जो है आमतौर पर 10 से 20 हो सकती है। एक परिवार से इसका केवल एक ही सदस्य बन सकता है और इसका संचालन जो है सदस्य हर सप्ताह अपनी महीने अपनी आमदनी में से एक निश्चित राशि की बचत करते हैं। यह जमा राशि बैंक में समूह में खाते के रूप में रखी जाती है। इस जमा राशि से जरूरतमंद सदस्यों को बहुत ही कम ब्याज पर छोटा ऋण दिया जाता है। यह बैंक लोन तरह बिना गारंटी के मिलता है, तो स्वयं सहायता समूह का लोन है, इसमें किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं है। SHG लिंक के सरकार बहुत उसको बढ़ावा दे रही है, तो आप अपना समूह बनाइए और उसके जो दस्तावेज लेके बैंक में आइए, आपको SHG लोन मिलेगा।
1: जी, SHG लोन है वो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ है और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने 2015 में युवाओं SC ST और जो अन्य वर्गों के लिए भी स्टार्टअप और इनसे संबंधित जो कार्य करने के लिए मुद्रा लोन है वो भी चालू किया था। तो किस प्रकार से अगर ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति है वो मुद्रा लोन लेना चाहे तो क्या करना चाहिए और कितना उसको फायदा मिलता है?
0: जी, मुद्रा लोन के बारे में बताना चाहूँगा कि जो तरुण जो नए उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं, जो कोई भी अपना नया प्रतिष्ठान खोल रहे हैं या किसी भी तरह का सेवा क्षेत्र में या उत्पाद क्षेत्र में जो भी अपना नया प्रतिष्ठान शुरू कर रहा है, उसके लिए ये मुद्रा लोन की स्कीम है। यह तीन तरह की श्रेणियों में इसको बांटा गया है, शिशु, तरुण और किशोर। तो ये अमाउंट के हिसाब से बांटा गया है, 2 लाख तक, फिर 8 लाख तक, 10 लाख तक, 20 लाख तक। तो आप इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, आप जो इसका DIC से जो है इसका अप्रूवल होता है, आप वहाँ पे एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं और DIC के थ्रू यह जो है आप अपनी पसंद की बैंक चुन सकते हैं। तो DIC के थ्रू ये एप्लीकेशन जो है बैंक में आएगी और फिर इसका आगे का प्रक्रिया होगी।
1: जी, आज भारत का किसान है वो सशक्त भी हो रहा है, मजबूत भी हो रहा है और वह न सिर्फ हम कह सकते हैं कि KCC और फार्म मैकेनाइजेशन से ट्रैक्टर लोन और इन्हीं पर डिपेंडेंट है, वो अन्य अपने जो रहन सहन है जीवन स्तर को व्यापक रूप से मजबूत करने के लिए, चाहे अगर उसको अगर गाड़ी भी चाहिए, व्हीकल चाहिए, अन्य प्रकार की और जो लग्जरी सुविधा के लिए भी वो लोन लेने के लिए अगर समर्थ है तो उसको क्या करना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, जैसे आम आदमी शहर का आदमी गाड़ी के लिए लोन ले सकता है, वैसे ही बिल्कुल किसान भाई भी अपनी जो पैसेंजर व्हीकल है उसके लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। वही प्रोसीजर है उनको एक इस व्हीकल लोन के बारे में एक मैं ये बताना चाहूँगा, कई बार जो है किसान भाई जो है इनका अपना इनकम टैक्स जो है वो फाइल नहीं करते हैं, भले ही वो टैक्स पेयर ना हो, लेकिन मेरी उनसे एक ये गुजारिश है कि आप इनकम टैक्स का रिटर्न जरूर फाइल करें, क्योंकि जब भी आप बैंक में इस तरह के कंज्यूमर लोन लेने जाएंगे तो बैंक जो है आपकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है, आपकी जो पुनर्भुगतान क्षमता है, वो आपकी आय के आधार पर ही निर्धारित करता है। तो आय का जो आधार है वो आपकी ITR में झलकता है। आप भले ही 20 लाख कमा रहे होंगे, 50 लाख कमा रहे होंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन बैंक उसका कागजात में प्रूफ मांगता है। तो मेरा यही आपसे गुजारिश रहेगा, आप इनकम टैक्स का रिटर्न जरूर फाइल करें, भले ही आप टैक्स पेयर हों या न हों, तो आपको आसानी से गाड़ी का लोन जैसे सामान्य आदमी को मिलता है, इससे भी रियायती दरों पर आपको बिल्कुल कार ऋण, हाउस ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
1: जी, जो अन्य प्रकार के ऋण हैं जो किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे जो पूर्वज है या कह सकते हैं अभी भी हमारे जो किसान भाई है उन पर सबसे अधिक जो फोकस करते हैं वो सेविंग पर करते हैं और आज की जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे सेविंग से सेविंग के भी माध्यम अलग अलग हो गए हैं। तो बैंकों के माध्यम से की जाने वाली जो बचत सुविधाएं हैं जिनसे किसान है वो थोड़ा थोड़ा पैसा एकजुट कर सकता है, कभी आने वाले टाइम उसके कोई भी अगर कोई कार्यक्रम

0: खरीदना हो तो उसको हर जगह बार बार कहीं ब्याज पर पैसा नहीं लेना पड़े, तो कौन कौन सी जो सेविंग सुविधाएं हैं बैंकें प्रदान कर रही है?
1: जी अमित जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, हमारे जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं, जमा के जो अपने उत्पाद हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे एक तो नॉर्मल बचत खाता है ही जो किसान भाई खुलाते हैं, वो बचत खाते के अलावा जो है अपने पास एफडी में निवेश कर सकते हैं, उसके बाद आप आरडी में निवेश करते हैं। एफडी जो होती है जिसमें आप एकमुश्त पैसा जमा करा सकते हैं किसी निश्चित अवधि के लिए, जिसमें वो अवधि की परिपक्वता के बाद आपको जो है मैच्योरिटी अमाउंट एक साथ मिल जाता है। और यदि कोई एकमुश्त जमा कराने में सक्षम नहीं है, कोई ये चाह रहा है कि भाई मैं 1,000 रुपये ही महीने बचा पा रहा हूँ, या मैं 2,000 ही बचा पा रहा हूँ, या 500 रुपये ही बचा पा रहा हूँ, तो वो एक आरडी जिसको आवृत्ति खाता बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, वो भी शुरू कर सकता है, जिसमें प्रति महीने एक निश्चित अमाउंट जो है वो अपने आवृत्ति खाते में जमा करता जाएगा, और जितने समय के लिए वो होगी उसकी परिपक्वता के बाद उसको पैसा मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ आजकल बीमा संबंधी भी कई प्रोडक्ट बैंक में उपलब्ध रहते हैं, विभिन्न कंपनियों से टाई अप रहता है। यदि आपकी अधिक क्षमता है तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं, और काफ़ी तरह के जो म्यूचुअल फंड और बीमा के जो उत्पाद है वो बैंक आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध करवाएगा।
0: जी सर, आपने बताया कि किस प्रकार से निवेश है, वो किसान है अगर वो समर्थ है तो निवेश में भी उसको हिस्सेदारी लेनी चाहिए। एक बड़ा सवाल और आता है सर कि अब किसान है वो अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बड़े जो प्रोजेक्ट है उसमें भी जहाँ पर पैसा अधिक चाहिए, जैसे पोली हाउस प्रोजेक्ट है, कोई कह सकते हैं स्टोरेज हाउस बनाना है, कोल्ड स्टोरेज हाउस है, तो इस प्रकार के कार्य के लिए उसको बहुत अधिक पैसा, तो भारत सरकार भी इन योजनाओं को प्रमोट कर रही है, तो बैंकों के माध्यम से अगर इस प्रकार का ऋण लेना चाहे तो किसान भाई को क्या करना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, जो बड़े लेवल पे जो अपने बड़े किसान हैं उनके लिए भी बैंक में बिल्कुल सुविधा उपलब्ध है। जैसे वेयर हाउस रिसिप्ट के सामने लोन होना है, आपका पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, और आपका पीएम कुसुम अभी योजना चल रही है, जैसे कोई किसान भाई सोलर का जो ये जो है JVVNL बिजली विभाग के थ्रू जो पीएम कुसुम का कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है उसको भी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, उसके लिए भी अपने पास 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की ऋण सुविधा उपलब्ध है।
0: जी किसान भाइयों, जो जो समस्त किसान भाइयों को दी जाने वाली सुविधाएं हैं बैंकों के द्वारा, क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है, चाहे वो बैंकों के द्वारा दी जाने वाले KCC हो, या फार्म मैकेनाइजेशन लोन हो, या पर्सनल लोन हो, एवं साथ ही बचत एवं निवेश संबंधी समस्त जानकारियां हैं वो आज आपको दी गई है। उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों का आपको भविष्य में बहुत अधिक फायदा मिलेगा। सर, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद अमित सर, आपने मुझे मौका दिया किसान भाइयों से रूबरू होने।
2: तो अभी आप बैंक वार्ता सुन रहे हैं, बैंक के द्वारा किसानों ने की ऋण मिले और बीजी सुविधाएं मिले उन विषय में थे पारस सरावगी से बातचीत कर रहा अमित कुमार और ए वरिष्ठ शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा पारस सरावगी जी। तो आकी थोड़ी सी बातचीत आप सुनी, किसान के हिसाब हूँ आपकी जकी जरूरत है उनकी पूर्ति करने के लिए बैंक को सहयोग के हिसाब ले सके हैं ऋण, या फिर ऋण के अलावा वो जितनी भी सरकार की योजना है उनको फायदो क्या ले सके, इन विषय में थे थोड़ी सी बात सुनी।
3: और देखो कि आप बातचीत तो सुनी और सगई है जो आपने किसान भाइयों को करा देवा मनोरंजन और सुना देवा एक

0: तो बाम खातर देखो का अब जकी भी आपा व्यवस्था कर सका आपा पूरी आपा न करनी कोई पशु का है जो लू की चपेट में है जो पशु नहीं आवे, क्योंकि जी लू की चपेट में अगर पशु आ गयो तो दुधारू पशु है जो दूध से नीचे उतर जाएगो। और खास करके छोटा ही बां को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, टाबर टीकरा को भी ध्यान रखो। और आपने भी जरूरी काम हो जदि बाहर निकला तावड़ा से जितो बच्चांगा बितो ही देखो अपना स्वास्थ्य है जो बढ़िया रहे लो।
1: बिल्कुल ठावड़ी सी बात बताई थे पर गड़ीज की इशारो करे तो किसान भाई फेरू मिलन तय आपा सीख ले और करा
0: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र चूरू से किया गया। रात्रि के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम की प्रस्तुति आप सुन रहे हैं अली गनी की आवाज में।

सतीश देहरा और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 साल एक गौरवशाली यात्रा। विषय पर डॉक्टर मंजू शर्मा, प्राचार्य लोहिया कॉलेज से भेंट वार्ता।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम आकाशवाणी 890 यानी आकाशवाणी के प्रसारण को 90 साल पूरे हो गए हैं और ये रेडियो से यानी आकाशवाणी से जुड़े तमाम श्रोताओं हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि सालों का सफर, दशकों का सफर रेडियो ने तय किया है आप सभी श्रोताओं के साथ। और इस सफर में हमारे सहभागी रहे हैं ऐसे प्रबुद्ध जन जिन्होंने अलग अलग तरीके से रेडियो को आगे बढ़ाने का काम किया है और लगातार इस श्रृंखला में हम ऐसे ही गणमान्य व्यक्तियों को आप तक रूबरू करवा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में इस वक्त राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू की प्रिंसिपल डॉक्टर मंजू शर्मा उपस्थित है। मैडम आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: मैडम। रेडियो का एक जो अपना अलग नजरिया है, रेडियो को लोग एक अलग तरीके से देखते हैं, आज भी रेडियो का अपना वजूद है, आपका रेडियो से किस प्रकार से जुड़ाव रहा, मेरा पहला सवाल।
1: हमारे समय में तो रेडियो ही महत्वपूर्ण था और रेडियो केवल एक सूचनाएं देने का या समाचार वाचन का ऐसा कोई केंद्र नहीं है, इससे भावनात्मक जुड़ाव रहा है
0: जी।
1: इमोशनल टच जिसको कहते हैं वो रहा है। अभी कोई भी चीज है तो उसमें वो भावनाएं नहीं जुड़ी हुई होती, तो मेरा तो बहुत ही आत्मीय और भावनात्मक लगाव है।
0: ये जो आप रेडियो से सबसे पहले आपने कब रेडियो सुना, जब एक उम्र का दौर होता है कि हम समझना शुरू करते हैं या फिर आपके अध्ययन काल में किस प्रकार से?
1: हम छोटे थे तो वैसे ही कानों में सुनता रहता था। पापा मेरे प्रोफेसर रहे हैं लोहिया कॉलेज में ही, तो उनको भी वो भी रेडियो सुनते थे, तो घर में समाचार सुबह सुबह चालू हो जाते थे और किसानों के लिए जो कार्यक्रम है वो चलते रहते थे, हवा महल चलता रहता था और ज्यादातर जो कमेंट्री है क्रिकेट की वो हमने सुनी, पापा के माध्यम से ही हम सुनते थे। पहले बच्चों को इतनी इजाजत नहीं थी कि वो मन मर्जी से कुछ भी करें, पढ़ते रहते थे हम लोग और घर में रेडियो की गूंज चलती रहती थी, देर रात तक गाने चलते रहते थे। मेरे पापा, मेरे चाचा जो डॉक्टर हैं वो, तो वो लोग सुनते रहते थे, उनके माध्यम से हमने सुना। पर हमें इतनी आजादी नहीं थी कि हम लिया रेडियो और सुन लिया, पर उनको भी मालूम था कि अब कमेंट्री आ रही है तो क्रिकेट को सुनने का रहता है।
0: सही बात है।
1: तो एक जिसको कहना चाहिए जादू सा था रेडियो में और इतनी शानदार जो आवाज होती थी उसके माध्यम से, ना कोई दृश्य है, कोई सीन या कुछ भी नहीं, केवल आवाज है और उसके माध्यम से ही सारा कुछ चलता था। तो ये एक वाकई जादुई दुनिया थी,
0: एक भावनाओं का संवाद का भी हम कहें रेडियो को।
1: हाँ,
0: जो बिना देखे बिना हम एक दूसरे को जाने पहचाने।
1: हाँ,
0: बेतार की दुनिया में।

0: हाँ, रेडियो के जो भी संवाद हम सुनते थे, जो भी आवाज सुनते थे, जो प्रोग्राम को प्रस्तुत करते थे, उनकी आवाज में एक अलग तरह की कशिश होती थी। हम जितना सुनते हैं उतना ही ज्यादा हमारा ज्ञान भी वर्धन होता है। पढ़ने का आजकल तो जैसे ना तो पढ़ने का रिवाज है, और रेडियो पे कोई आता है बोलता है तो उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहले किताबें पढ़ते थे लोग और रेडियो पे चर्चाएं होती थी, कोई भी समाचार हो उसको वो इतना आनंद से सुनते थे। उस समय एक दृश्य में परिवर्तित हो जाता था, जैसे कोई गाना भी सुन रहे हैं तो दृश्य आंखों के आगे आता था। नाटक का जो नाट्य कार्यक्रम होते थे, प्रस्तुतियां, उसमें हमारे सामने कोई दृश्य नहीं था, कोई बड़े पर्दे पर हम देख रहे हैं, कुछ नहीं, हम अपने मन में उतर करके, बोलने वाला बोल रहा है, संवाद चल रहे हैं, और हम मन में उतर करके उसको आत्मा से उसका साक्षात्कार करते थे।
1: एक तरह से चित्रांकन हमारे दिल दिमाग में उस चीज का,
0: बिल्कुल ऐसे मेडिटेशन हो जाता था कि बिना दृश्यों के श्रव्य साधन से, और हम कितना कुछ ग्रहण करते थे। और जिसको कहते हैं फोकस, एकाग्रता, वो सिर्फ रेडियो से ही हो सकती है। तो घर घर में रेडियो चलते थे, मुझे याद है हम पहले सबके पास तो कारें नहीं होती थी, व्हीकल ही नहीं होते थे, सार्वजनिक व्हीकल से ही जाते थे हम, ट्रेन से जाते थे या बस से, बस स्टेशन पे, बस स्टैंड पे बैठते थे, वहां दुकानों पे रेडियो चलते थे, और रेडियो से कृषि दर्शन भी चल रहा है या कृषि संबंधी खेल के, युवाओं के, बच्चों के कार्यक्रम, कानों में मधुर संगीत गूंजता था। तो वो एक दुनिया जो थी वो बहुत ही रोचक दुनिया थी।
1: जी, आपने बताया कि आपका जो घर का माहौल इसी प्रकार रहा कि रेडियो से अपने आप ही जुड़ाव हो गया। रेडियो से बहुत सारे हमारे जो अधिकारी वर्ग, हम कई बार चर्चा करते हैं तो बताते हैं कि रेडियो हमारे जॉब के लिए या हमारी उच्च जो शिक्षा है उसके लिए काफी सहायक सिद्ध हुआ। तो कोई ऐसा आपका भी ऐसा वाकया है कि स्टडी के दौरान या एग्जाम की तैयारी के दौरान रेडियो का साथ मिला?
0: स्टडी में तो रेडियो का मुझे इतना नहीं लगता, पर हाँ ये जरूर है कि पढ़ते पढ़ते जब हम बोर हो जाते थे या एक ऐसे होता कि भाई अब बहुत उबाऊ हो गया है, तो हम रेडियो चलाते, और उसमें जो दोपहर में सब सो जाते थे, मुझे सोने की आदत नहीं थी, मैं रेडियो सुनती थी, तो उसमें बहुत सारी ऐसी ज्ञानवर्धक चीजें, बातें महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित, और इंटरव्यू वगैरह होते थे, तो वो सुनकर के मुझे बहुत प्रेरणा लगती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप सीधा किसी चीज से सीखते हो उसकी बजाय वो आपको मोटिवेशन दे, तो रेडियो का मोटिवेशन में बहुत रोल था। और रेडियो ऐसा साधन कि जिसमें कोई भी क्षेत्र हो उससे संबंधित प्रसारण होते थे, हम सुनते थे, और घर घर में ही रेडियो की आवाज सुनती थी। कहीं भी जाओ, चाहे सुबह सुबह के कार्यक्रम, हम तो बल्कि घर के काम उस समय बच्चों को करने होते थे, घर के काम में मम्मी का सहयोग करते थे, तो रेडियो चलता रहता था। सुबह फरमाइशी गानों के कार्यक्रम चलते थे, और उनको मतलब एक ऐसे था कि हमारे लिए दवाई का काम करते थे, पूरे दिन भर का मोटिवेशन मिलता,
1: पूरे दिन की ऊर्जा रेडियो से मिलती थी।
0: कितने ही ऐसे प्रोग्राम थे जिनकी उर्दू सर्विस ऑल इंडिया रेडियो की जो चलती थी, क्योंकि पहले मुंबई से ही शुरू हुआ था रेडियो, उसके बाद में ऑल इंडिया रेडियो हुआ। तो वो एक ऐसा समय था कि जिसको मैं याद करती हूँ, वो एक ऐसा दौर था कि आप रेडियो सुन रहे हो और आप साथ साथ आपके रील अपने आप चल रही है, आपने नहीं देखा पर वो रील चल रही है। सबसे बड़ा तो एक सम्मोहन ये था, सम्मोहन ही कहूंगी इसको, कि जब आज भी हम क्रिकेट मैच देखते हैं और पूरे बड़े अलग अलग कैमरा से हर एक को कैप्चर करते हैं, वो कैमरा बहुत ही नजदीकी चीजें दिखाते हैं, पर वो मजा और वो जादू नहीं है,
1: वो जोश नहीं है,
0: वो नहीं है। कमेंट्री जो कमेंटेटर होता था वो हमें साथ बहा करके ले जाता था, हम मतलब बिल्कुल मैदान में पहुंचे हुए होते थे। तो कहां कुछ भी नहीं था लेकिन बहुत कुछ था, अब बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, केवल एक ऐसे लगता है कि ऊपरी चीज है।
1: आपने बीच में गीत संगीत की भी बात की कि गाने बजते थे, तो कोई एक ऐसा गाना आपको याद आ रहा है जो आपको बहुत पसंद हो और रेडियो पर भी आपने सुना हो, तो आज हम इस कार्यक्रम के बीच में उसको प्ले करें?
0: गाने तो खैर गजलें गाने बहुत ही सुनते थे, हेमंत कुमार के गाने, जैसे तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, या फिर कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तो ये गाने सुनते सुनते, मधुशाला सुनते थे।
1: तो श्रोताओं,

0: गीत के बाद फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं रेडियो का हमारे जीवन में और पूरे संपूर्ण भारत में ही अगर हम कहें कि रेडियो का एक अलग योगदान रहा है। आप खुद कला संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, तो किस प्रकार से मानती हैं कि रेडियो ने कला संस्कृति और संरक्षण में अपना योगदान दिया है ओवरऑल?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, जो हमारे लोक कलाकार हैं, लोक भाषाएं हैं, जो हमारा गीत संगीत और वाद्य यंत्रों का कार्यक्रम है, इसके लिए तो एक तरह से संजीवनी बूटी रेडियो है
0: जी।
1: क्योंकि हर लोक कलाकार तक पहुंच होना और उनको एक मंच मिलना, ये बहुत मैं कहूंगी कि रेडियो का ये बड़ा योगदान है इसमें। हमारे दूर दराज के गांव में जिन कलाकारों को कोई पहचानता नहीं है या कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर उनका कोई स्वागत नहीं कर रहा होता है, रेडियो उनकी शरण स्थली है। हमारा जो अपन राजस्थान में है तो राजस्थान की संस्कृति, यहाँ के जो जलवायु है, पर्यावरण है, या यहाँ की हमारी जो संस्कृति है, पहनावा है, उन सब तक पहुंचने का जरिया मैं रेडियो को मानती हूं। और उनका जो मान सम्मान है कलाकारों का, वो रेडियो के थ्रू होता है और ये हमारी संस्कृति को बचाए हुए है। तो मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पर इस बात के लिए सभी लोग कलाकारों को भी बधाई देती हूं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज के दौर में भी मन की बात आदि से आकाशवाणी रेडियो को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है और शायद आज के युवा इसके माध्यम से और ज्यादा जुड़ सकें और विस्तार पा सके।
0: जो भाषाई ज्ञान है, जिस प्रकार से रेडियो का जो अनाउंसर होता है या कोई भी कार्यक्रम देने वाला होता है, उसकी भाषा पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, आपका मानना है कि क्या जो किसी भी व्यक्ति की भाषा में सुधार हो या उसके व्यक्तित्व में विकास हो, संपूर्ण विकास, उसमें भी

0: कुछ इस प्रकार का एक अगर कोई व्यक्ति रेडियो सुने तो उसमें योगदान है
1: बहुत ज्यादा। मैं ये मानती हूँ कि सुनने से बहुत ज्यादा सीखा जाता है, और क्योंकि ध्वनि है, भाषा है, उसको कैसे बरतें, उसको बरतने की एक कला रेडियो सिखा सकता है। जब कोई बच्चा शुद्ध भाषा को सुनता है, अपनी

0: वो भी सुनते हैं तो उससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है, अच्छी ध्वनियां सुनने से बदलाव आता है। तो भाषा के लिए तो रेडियो क्रांतिकारी है, बच्चे सुनेंगे, उच्चारण सुनेंगे, जब हम बोलते हैं तो उतार चढ़ाव, कहाँ आपको स्ट्रेस मार्क लगाना है, कहाँ आपको लंबा खींचना है बोलने में, स्वरों का, ये सारा हम केवल सुनने से ही सीख सकते हैं। तो रेडियो का भाषा में तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा आप जो सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम करवाते हैं
1: जी।
0: साहित्य, मैं खुद साहित्य की हूँ, साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, बरसों मैंने हिंदी साहित्य को पढ़ाया है, तो नाटक, कहानी, उपन्यास, इन सब से मेरा लेख निबंध इनसे जुड़ाव रहा है। तो रेडियो की भूमिका तो बहुत जबरदस्त है। अभी अगर आप चाहें तो साहित्य के तरफ आप अगर बढ़ें, कहानियां, उपन्यास, इनका वाचन इससे हो, तो बच्चे कितना कुछ सीख सकते हैं, युवा जो है वो साहित्य से जुड़ सकेंगे। और साहित्य तो समाज का दर्पण होता है, वैसे भी जो घटित होता है वो दर्पण है साहित्य, उसमें दिखाता है। तो हमारी भाषाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है, मैं ये कहूंगी।
1: देखिए, रेडियो मनोरंजन का एक अलग पहलू है, रेडियो का, उसके अलावा रेडियो सूचना, शिक्षा और लोगों के बीच में अलग अलग एक दूसरे के प्रति विचारों का आदान प्रदान करने का भी काम करता है। तो आप खुद रेडियो की श्रोता रही हैं और लगातार चूरू आकाशवाणी से भी आपका जुड़ाव रहा है, तो ये जो साहित्यिक कार्यक्रम है हमारे यहाँ से एक अलग उसका चंक भी रहता है, क्या मानते हैं आप कि इनको एक आम व्यक्ति को सुनना चाहिए? खुद अगर एक आप प्रस्तुतकर्ता या लेखक बनना चाहते हैं तो उससे पहले, या वक्ता बनना चाहते हैं तो उससे पहले श्रोता होना कितना जरूरी है?
0: बहुत बहुत अच्छी चीज है अगर ऐसा होता है कि अपने युवाओं में साहित्यिक कार्यक्रमों को सुना जाए। तो साहित्य पढ़ने और सुनने से एक समझ, एक सोच पैदा होती है, हृदय का विस्तार होता है, और चेतना के स्तर पर व्यक्ति को साहित्य जो है वो झकझोरता है। क्योंकि एक भी लाइन अगर कोई साहित्यकार लिखता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रेमचंद जी ने कहा है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। अब इस लाइन को कोई सुनता है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो जैसे बचपन उसमें लौट आया है, इस बात को कोई सुनेगा तो कितना उस पर चिंतन किया जा सकता है ना। या अपन कहें कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो ये एक बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही, दर्पण कैसे होता है? क्योंकि अगर हम रामायण युग की बात करें, रामायण एक साहित्य है, रामचरितमानस, अब उसके समाज को अगर अपन देखते हैं तो क्या लगता है? भाई भाइयों में प्रेम, एक दूसरे के लिए राज सिंहासन का त्याग कर देना, ये देखा,
1: त्याग समर्पण,
0: वो देखा अपन ने। महाभारत युग में देखा, सुई की नोक के बराबर भूमि अगर नहीं देनी और इसके लिए महाभारत का युद्ध हो जाता है, वैल्यूज बदल गए, मूल्य बदल गए। तो दर्पण ही है साहित्य, जो है वो समाज का दर्पण है। दर्पण में अपनी छवि देख सकते हैं हूबहू, साहित्य में भी हम वो समाज को देखते हैं।
1: साहित्य हमें वही दिखाता है या प्रस्तुत करता है जो हम हमारे आसपास देखते हैं,
0: आसपास देखते हैं,
1: और उससे सीखने को तो मिलता ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये जो साहित्य और कहानियों की बातें हम कर रहे हैं, आप कहानियां भी लिखते हैं, तो रेडियो का जो एक अपना अलग मंच रहा है, रेडियो ने स्थानीय कलाकारों को भी काफी महत्व दिया है, उनको आमंत्रित भी किया है समय समय पर। आप क्या मानती, चूरू आकाशवाणी से जब से यहाँ केंद्र की शुरुआत हुई, आपने यहाँ से कौन कौन से कार्यक्रम सुने, और उसमें जो साहित्यिक कार्यक्रम है, स्पोकन वर्ड के हम जो बोलते हैं उच्चारित शब्द के, वो आपको ऐसे कार्यक्रम जिनको, जिन्होंने आपको प्रभावित किया?
0: हाँ, मुझे अब इतना समय तो नहीं मिलता, फिर भी कई बार कुछ कहानियां वगैरह मैंने इस पे सुनी है। मेरे ख्याल से अंजू राजपाल या मंजू राजपाल, इनमें से किसी की कहानी मैंने एक बार इसमें सुनी थी, प्रभावित किया मुझे। कई बार जैसे महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, महिला सशक्तिकरण पे कार्यक्रम हुए हैं, वो मैंने सुने हैं। कई बार गीत संगीत के कार्यक्रम भी सुन लेती हूँ, पर मैं बहुत समय इस पे नहीं दे पाती अभी व्यस्तता के चलते। तो फिर भी जैसे ही
1: समय मिलता है
0: और अपने यहाँ के कईयों का इंटरव्यू वगैरह, कुछ ख्यात लोगों का इंटरव्यू सुनते हैं, तो एक मन में एक ऐसे टच करता है वो कि अपने यहाँ के लोग हैं और उनको हम आकाशवाणी में सुन रहे हैं,
1: स्वतः जुड़ाव हो जाता है।
0: स्वतः ही जुड़ाव हो जाता है।
1: और ये भी होता है, जैसे हम सफर कर

0: रहे होते हैं कहीं गाड़ी में, तो आजकल तो एफएम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो देखिए व्यस्तता के बीच में हम अगर रेडियो को सुने और हमारी बातचीत के बीच में अगर हम एक गाना न सुने तो वो थोड़ा सा एक गाना और आप थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप बताएं तो।
1: मैं ये सुनना चाहूंगी, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है,
0: चिराग फिल्म का गाना।
1: जी
0: बहुत उम्दा पसंद। और अभी जिस जिम्मेदारी पर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है वहाँ बहुत सारे विचारों का समुद्र चलता रहता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है। इस बीच आप रेडियो पर आए हैं और एक और गीत हम चिराग फिल्म का तेरी आंखों के सिवा प्ले कर रहे हैं।

0: साल का सफर है आकाशवाणी का। अब एक अधिकृत रूप से पहले ऑल इंडिया रेडियो कहते थे, अब आकाशवाणी ग्रुप में ही हमें जाना जाता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करें कि आकाशवाणी का जो भविष्य है, क्या मानते हैं आप? जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात को अनवरत जारी रखा है पिछले कई सालों से, तो इससे वापस लोगों में जुड़ाव हुआ है या जो अन्य प्रतिस्पर्धा के रूप में जो अन्य मनोरंजन के साधन है, क्या फर्क मानते हैं?
1: जो भी प्रतिस्पर्धा में कुछ उतरता है वो कभी भी आत्मा में नहीं उतरता। जितनी भी पुरानी चीजें हैं जहां से हम आए हैं उनके प्रति तो आकर्षण रहेगा ही रहेगा, भले ही आज के दौर में कुछ समय के लिए लुप्त हो जाएं चीजें या कम हो जाए, लेकिन आदमी जड़ों की तरफ लौटता है। आकाशवाणी आज भी अपने उसी ग्रेस के साथ आगे बढ़ रही है। दौर बदला है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जो युवा है, जैन जी है, उसके अंदर एक रिट्रो की तरफ बढ़ने की एक प्रवृत्ति देख रही हूँ मैं। तो अगर थोड़ा इसका और ज्यादा हम प्रचार प्रसार करें, हम मिल करके जो भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, बच्चों का, युवाओं का जुड़ाव आकाशवाणी की तरफ करें, तो आज भी आकाशवाणी को कोई बीट नहीं कर सकता कोई भी साधन, क्योंकि भौतिकता की चीजों से एक उकताहट पैदा होती है। एक समय बाद आंखें थकने लगती है कि कितने दृश्य देखें, सारे टाइम मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, हम दृश्य ही दृश्य देख रहे हैं, अंदर नहीं देख रहे हैं। यानी दृश्य देखना बाहर की चीजें, जब आकाशवाणी के माध्यम से हम कुछ देखते हैं तो अपने भीतर उतरते हैं। ये अभ्यांतरीकरण की प्रक्रिया है,
0: आत्मसात करने की,
1: हाँ, भीतर देखने की, भीतर उतरते हैं हम। और जब आदमी भीतर उतरता है तो वो चेतना के स्तर पर चीजें छूती है। आंख बंद कर अपन अगर कोई गाना सुनते हैं, कोई गजल सुनते हैं, तो हम एक दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं और कुछ समय के लिए हम कट जाते हैं बाहर की दुनिया से। और वही बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पूरी तरह से सूचनाओं से भरे पड़े हैं, अपने अंदर झांकने की हमें समय ही नहीं है, बिल्कुल
0: इतनी फुर्सत नहीं है। और वो फुर्सत मिल जाती है अगर हम रेडियो थोड़ा
1: रेडियो सुनेंगे तो अपन एक अपनी दुनिया में रहेंगे। कुछ समय के लिए समाज से कटना, चीजों से कटना एक मेडिटेशन है, जरूरी है। अन्यथा आजकल अवसाद के शिकार हो रहे हैं लोग, सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है, दृश्य दुनिया में विचरण कर रहे हैं और श्रव्य दुनिया को अपन ने भुला दिया। शोर शराबा है चारों तरफ,
0: बहुत ज्यादा है। देखिए, आप यहाँ लोहिया कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, हजारों स्टूडेंट्स आपकी नजर में रहते हैं और आज आप इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति में हैं। हम चाहेंगे कि आप एक ऐसा संदेश हमारे युवा साथियों और तमाम श्रोताओं तक पहुंचाएं, जो जिन्होंने आकाशवाणी सुन रहे हैं उनके लिए तो हम है ही, और जो आकाशवाणी से कुछ दूर हैं उनको हम कैसे जोड़ें, एक संदेश?
1: मैं तो यही कहूंगी कि अभिभावकों को जितना जोड़ सकते हैं कि आप अपने बच्चों को बात करें, शाम को बैठें और कहें आधा घंटा एक घंटा आप रेडियो सुने, आकाशवाणी सुने, जिसकी जो रुचि हो, जिसकी समाचारों में रुचि है वो उससे सुने। आप किचन में काम कर रहे हो आप समाचार सुनो, या महिलाएं हैं तो महिला से संबंधित सुनो, और अगर आपको पर्यावरण का शौक है तो आप उससे संबंधित कुछ समय के लिए सुनेंगे तो आप अपनी मन की आंखों से देखेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, है ना, तो वाकई ये मन की ही बात है। और हम आजकल सिर्फ मन की बात नहीं सुन रहे, बाकी सारी दुनिया की बात सुन रहे हैं,
0: है ना।
1: तो मैं ये चाहूंगी कि हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकें। मैं अपने क्षेत्र में भी बच्चों से जरूर कहूंगी, कॉलेज में भी, कि भाई वो आकाशवाणी से जुड़े, सुने उसको, और जितना हो सके एक घंटा अगर कोई व्यक्ति युवा इसके लिए निकालता है, रुचि अपनी गजलें सुननी है तो उसका प्रोग्राम सुनो, नाटक या साहित्य में रुचि है तो उससे संबंधित
0: हर विषय पर उपलब्ध है,
1: हर विषय पर उपलब्ध है। तो कम से कम हम अपने बच्चों से ही करें, जो अपने घर के बच्चे हैं, परिवार के, पड़ोस के, उनको भी कहें कि एक घंटा आकाशवाणी को दो, तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: जी हाँ, 24 घंटे में अगर एक घंटे अगर हम आकाशवाणी यानी रेडियो के प्रति थोड़ा सा हमारा झुकाव बने, जुड़ाव बने, तो उसके दूरगामी परिणाम
1: हार्मोन्स रिलीज होंगे हैप्पीनेस के, अच्छे वाले, है ना, और आंखों को सुकून मिलेगा। जो देखते ही देखते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, रात तक देखते हैं,
0: और आजकल तो आकाशवाणी शुरू है वो प्रातःकालीन सभा में, सुबह 6 बजे से पहले ही हम शुरू हो जाते हैं, तो जरूर हमारे श्रोता तक आपकी बात पहुंची है। और आकाशवाणी 890 में भी आने वाले समय में और ज्यादा नवीन कार्यक्रमों के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। आज इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल रही लोहिया कॉलेज चूरू की प्रिंसिपल डॉक्टर मंजू शर्मा। मैडम, आप आए।

आकाशवाणी के 90 साल एक गौरवशाली यात्रा विषय पर डॉक्टर मंजू शर्मा प्राचार्य लोहिया कॉलेज चूरू से कुंज बिहारी विरमेवाला की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र चूरू से किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क

0: करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, अनु मलिक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, जीते हैं शान से फिल्म का ये गाना, अनु मलिक का संगीत।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं जूली।

आकाशवाणी चूरू से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आपको बता दें रात 9:15 पर श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भवन। और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये गाना। एस जानकी, मोहम्मद अजीज और

0: क्योंकि आवाजें फिल्म आखिरी रास्ता गीतकार आनंद बख्शी संगीतकार लक्ष्मीकांत पेरिलाल
1: ओके रेडी

आखिरी रास्ता फिल्म के संगीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता भी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ @9।

0: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में

0: डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
3: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
4: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
3: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस, स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया।

0: और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साई रमुजतबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration. Condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stalks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav, and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Red Fort last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
5: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज. इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल.
4: परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: मिस्टर शाह सेड स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्वड. ही स्ट्रेस्ड दैट सिंस ड्रोन्स लैंड इन द इंडियन टेरिटरी, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द लोकल पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई दोज रिसीविंग सच कंसाइनमेंट्स एंड टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स इफेक्टिवली.

कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना हेमलता, जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में नदिया के पार फिल्म का ये गाना। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। पसंद थी आप सभी श्रोताओं की। आप हमारे श्रोता हैं गांव पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश। आप हमारे श्रोता हैं लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, निहारिका, योगेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से हमारे साथी हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन, देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल। आप हमारे साथी हैं हनुमानगढ़ टाउन से हमारे श्रोता रजाक मोहम्मद, शमी बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला, विशाल, नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर। और ये हमारे श्रोता हैं गांव लसुड़ियापाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। आप सभी ने सुना अपनी पसंद का गाना। अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी के रेडियो सेट पर फिल्म कूली नंबर वन से। इस गीत को गाया है कुमार सानू, पूर्णिमा ने, समीर का गाना, आनंद मिलिंद का संगीत। पसंद आप सभी श्रोताओं की।

कुली नंबर वन फिल्म का ये गीत था, कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज थी इस गीत के लिए। पसंद थी आप सभी श्रोताओं की। आप हमारे श्रोता हैं लिखने वाले मां नर्मदा, श्रोता परिवार, शिव कोठी, ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर से, राकेश, पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, कुमारी सपना, ओम सेन, द्वारका बाई सेन और इनके सभी साथी। आप हमारे श्रोता हैं इंदौर लिम्बोदी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा चौधरी और इनके सभी साथी। आप हमारे श्रोता हैं फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विष्णु विशाल, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, दिवानशी खेड़ा, वाणी खेड़ा और आरबी खेड़ा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, श्राव्या और इनके सभी साथी। छत्तीसगढ़ से हमारे साथी हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। आप हमारे श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, पड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और इनके सभी साथी। आप हमारे साथी हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय और इनके सभी साथी। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। आप सभी ने सुना अपनी पसंद का ये गाना। अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण का गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम ब्लैकमेल।

0: किशोर कुमार की आवाज में ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, पसंद थी आप सभी श्रोताओं की। आप हमारे श्रोता हैं, लिखते हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और इनके परिवार के सभी सदस्य, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। आप हैं हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी प्रिंस बोत, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। मजनू का टीला से कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा, सतना एमपी से हमारे साथी हैं उमंग मलिक, आकांक्षा और माहिक। चंद्रपुर नगर सहारनपुर से एस के नारंग, आशा नारंग, सोनाली और सुरेश। आप हमारे साथी हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन। उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन और इनके सभी साथी। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पेहू। और यह श्रोता है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान। आप सभी ने सुना ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू

सोनू निगम की आवाज में आपने सुना हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का ये गाना। पसंद करने वाले श्रोता आप सभी, आप हमारे श्रोता हैं लिखने वाले, वार्ड नंबर 6 सिरसिला जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमवल सोनगरा, कार्तिक और इनके सभी साथी। आप हैं ददरेवा से गंगा शिम्पा, उषा, अवनी और अक्षय। शीतला गेट बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद सुजैन, मोहम्मद आजम, नूर फातमा, अकमल हुसैन भियानी, अमजद अली खींची और एम सफी मिस्त्री। आप हमारे श्रोता है वार्ड नंबर 60 चुरू से हरिप्रसाद तंवर, महेंद्र चंद्रकांता, पूजा प्रेम, श्याम सुंदर, सुनीता, पंकज, पवन, धर्मेंद्र, रूबी, अंजलि, प्रतीक्षा, खुशाल और इन्हीं के साथ में है कमल किशोर, माया, तमन्ना, चंद्र प्रकाश और इनके परिवार के सभी सदस्य। गायत्री नगर चुरू से हमारे श्रोता है मनोज, पूनम, मुकेश, रूहानिका, भरत और इनके मम्मी पापा। झारियामुरी चुरू से हमारे साथी हैं महेश, मीना, गुंजन, लवीना और इनके सभी साथी। आप हमारे श्रोता हैं कोर्ट के पास लक्ष्मणगढ़ से श्याम सुंदर, पूजा देवी, सोनू, दीपिका, मोनू, काजल, विनोद, रोहित, भावेश और हिमांशी। आप हमारे श्रोता हैं इसी गीत को पसंद करने के लिए लिखने वाले भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार, परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रगेश और प्रतेश, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, बिहारी कॉलोनी शाहदरा, दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, चंडीगढ़ से साथी हैं राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान और इनके सभी साथी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म सड़क से। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल ने, समीर का गीत, नदीम श्रवण का संगीत है।

सड़क फिल्म का ये गीत था समीर का लिखा, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में आवाज थी अनुराधा पोर्टवाल की। और इस गीत को सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता, आप हमारे नियमित श्रोता भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा हमीरी कला झुंझुनू से, महेश जानू बहादुरवास झुंझुनू से, सुखचेंद्र भुगालिया चिड़ावा झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल बिदासर झुंझुनू से, राजा नंदवाणी रजत, रोहित केशव मुकुल, मनीष सुमित, साक्षी किरण नंदवाणी नई सड़क चुरू से, जगदीश मंडल अभिषेक मंडल गुदरी बाजार चुरू से, राकेश कुमार दुधवा मिठा चुरू से, अरविंद खारड़िया लादरिया चुरू से, निशांत फुंडे, ओम प्रकाश फुंडे, मानसी चेतन गोंदिया और इनके सभी साथी आप हैं गोंदिया महाराष्ट्र से। आप सभी ने सुना अपनी पसंद का गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से कार्यक्रम मन भावन केशवदेव तंवर के साथ। लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की आवाज, भाभी फिल्म का ये गाना, राजेंद्र कृष्ण का गीत, चित्रगुप्त का संगीत।

भव्य फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की थी आवाज़। और कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवाएंगे हंसते जख्म फिल्म से। इन दोनों गीतों की मिली जुली फरमाइश इस प्रकार से हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका और वंश। आप हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दजीत सिंह, दाजीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। मुरादाबाद यूपी से हमारे साथी हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून। शादुल शहर श्रीगंगानगर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं राजकुमार, रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि और श्रीमती शीतल। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनित कुमार और सोनम वर्मा। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। गांव रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश और दिव्यांश। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। आप हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। नतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नुखेलाल। आप हमारे साथी हैं गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार और इनके डूडी परिवार के सभी सदस्य। कोलिना महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साईं गायकवाड़। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। आप हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातान सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से हमारे साथी मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका और अरोड़ा परिवार के सभी सदस्य। और ये हमारे श्रोता है नेकी राम रेवाड़, संतोष, ममता, कल्पेश, शैलेश, गांव से स्वास जिला झुंझुनू से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म हंसते जख्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, कैफी आजमी का गीत, मदन मोहन का संगीत।

श्रोताओं, यह था आपकी पसंद पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम मन भावन। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए अपने रेडियो दोस्त किशोर देवतावर को इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम मन भावन। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं पंकज उदास की गाई कुछ गैर फिल्मी

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की गाई कुछ गैर फिल्मी रचनाएं। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चूरू से किया गया। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सीमा मिश्रा के गाइस गीत के साथ।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आइए आपको सुनाते हैं अली और दीपाली की आवाज में ये लोक रचना।

रागिनी और साथियों की गाइस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी चूरू से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को

0: संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, Demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: The government of India is preparing to roll out anti-drone system for drones and similar aerial threat within the next 6 months. However, since these drones eventually land on Indian territories, we must remain highly vigilant about those who may use the materials carried by them for anti-national activities. Effective neutralization will require strong coordination with civil authorities and district police, along with prompt and result-oriented action at every level.
2: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price MAPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
4: FM 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। कल पहली सभा में सुबह 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।